0: चोरपालिया के, कितने बजे की आग थी, फायर की कॉल की. So what they're suggesting that 2 hours back, this call was received by the DFS team, and after that, approximately 15 to 20 fire tenders were rushed to the spot, and right now the fire is under completely under control. अच्छा ये बताइए आप अंदर से आ रहे हैं, आग लगी है या बुझ गई अभी तक? अभी लगी हुई है, बुझाने की प्रक्रिया चल रही है. कितने बजे आग लगी थी? 3 बजे के आसपास लगी थी. और किसी के हताहत होने की खबर है इसमें?
1: All right.
0: सब लोग बाहर निकाल लिए गए.
1: All right, of course. Thank you so much, Akhil, for joining us and sharing those updates with us. We're understanding an important update coming in from the national capital, where a fire has broken out at a workers' compound near Udyog Bhavan. Let's now take you to Uttar Pradesh. With 15 people dead and fresh action underway in Lucknow, building fire probe, the focus is now on who failed and who will be held accountable. While the probe is now on ground, the SIT has visited the site of the deadly Lucknow fire, inspected the building and even begun examining possible safety lapses. While the focus is also on the building itself, a fresh demolition notice has now been issued for the fire hit structure, even as questions grow over why earlier action failed to stop its operations. Investigators are examining the building's history, alleged violations and a demolition order that existed years before the tragedy. Meanwhile, the legal crackdown is gathering pace. All 4 accused arrested in connection with the Lucknow fire tragedy have now been sent to judicial custody.
2: और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है, आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था.
3: यह है कि भ्रष्टाचार सब मानकों के ऊपर है, भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है और उसी का परिणाम ये जान चली गई. लखनऊ में कोई पहली बार जान नहीं गई है. हमने आपने देखा जहां गरीब रहते थे, बड़े पैमाने पर झोपड़पट्टियां थी, वहां पर आग लगाई गई कि आग लग गई. इसी तरह चारबाग में एक बार घटना हुई थी और लेवाना वाला जो होटल था वो भूल नहीं सकते हैं कि हजरतगंज शहर में इतना प्रतिष्ठित होटल में आग लगी और जान चली गई. और आज हम लोगों ने कल ही देखा है कि कितने बड़े पैमाने पर बच्चों की जान चली गई, नुकसान हुआ और रेजिडेंशियल एरिया में ये कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी.
4: जैसे भी लखनऊ में जो अग्निकांड की घटना घटी है जिसमें ढेर सारे बच्चे कैजुअल्टी हुए हैं और उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग को डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तरह से सख्त निर्देश है. और ऐसा नहीं कि ऐसी घटना घटी है तो ही हम लोग कोचिंग संस्थान का ऑडिट कर रहे हैं, हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं, लगातार कर रहे हैं. संस्थान को फायर ऑडिट नहीं करवा रहे हैं या फायर शक्ति सिस्टम
5: निकालते हुए
4: उनको नोटिस दी जा रही है, उनको सुझाव दिया जा रहा है, एक टाइम पीरियड भी दिया जा रहा है. टाइम पीरियड के अंदर जो फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगाते हैं तो उनके ऊपर इतनी बड़ी स्तर से कार्रवाई के लिए.
1: Let's now take you through more updates coming in at this hour now from Maharashtra. What was first believed to be a tragic accident at Maharashtra's Lohargarh Fort has now turned into a chilling murder mystery. As the probe gathers pace, both Chetan and Sia have been remanded and sent to a 7-day police custody. The deceased father, Ketan's father, in fact, has come out since and leveled some serious allegations against Sia and her lover Chetan, stating that their affair had been going on for over a year and that Sia's family members had concealed that very information amid the startling revelations. While another major conspiracy has been uncovered, revealing that this was not Sia's first murder attempt. While the couple had earlier travelled to the fort and the exact same situation had occurred, but Ketan had managed to survive. Let's bring you more updates coming in at this hour from this very story, an important update coming in. Well, of course, it is a horrific murder. A young man dead, a fiancé under arrest, and a father making explosive claims of a cold-blooded conspiracy. The murder of 26-year-old Ketan Agarwal has sent shockwaves across Maharashtra, with new allegations suggesting that the killing at the Lohargarh fort was not a crime of impulse, but the final execution of a carefully planned plot. Here's a special report that breaks down all the details. Take a look.

0: found guilty should be spared. However, it is ironic that leaders of a party that questioned the Ram Mandir movement for decades are now attempting to position themselves as guardians of Lord Ram's interests.
1: हमने तो या ट्रस्ट ने कोई अभी चंदे की या जो वहां पर दान आता है उसकी प्रतिदिन जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई। इकट्ठा होता है, बैंक वाले गिनते हैं, बैंक वाले बैंक में जमा कराते हैं, उसके बाद वो अकाउंट में जमा होता है। कहीं भी ये सिस्टम डेली का डोनेशन उसकी लिस्ट जारी करने का या अमाउंट जारी करने का नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आने वालों की संख्या घटी नहीं है, जितने पहले आते थे उतने ही अब भी आ रहे हैं, इसलिए इन आरोपों से राम भक्त प्रभावित नहीं है।
2: इसमें ये सिंधी समाज की वो चांदी की शिला का हिसाब किताब है कि नहीं है? अभी तो एक परत और निकल आई कि चांदी की शिला गायब हो गई, हीरे जवाहरात गायब हैं, सोने की ईंट गायब है, न जाने क्या क्या गायब है।
3: All right, moving on to the other big stories we're tracking. The battle for control of the Trinamool Congress appears to be entering a new phase, with both camps now taking parallel organizational and procedural steps to strengthen their competing claims over the party's structure and legitimacy. Just a day after Ritaprata Banerjee led the camp and the new working committee, removing Mamata Banerjee as chairperson, Mamata Banerjee too submitted a fresh list of the National Working Committee, reasserting firm control over the organization. Amidst this, five members of the rebel faction, including Ritaprata Banerjee, met Bengal's chief electoral officer, Neelam Meena, in Kolkata to submit the new National Working Committee list. On the question of claiming the Trinamool Congress symbol, Ritaprata Banerjee asserted that it's not even a question, claiming that his faction is the real TMC. Adding to this, a new district committee will be formed in the next 21 days. Meanwhile, Mamata Banerjee's loyalists have rebuked Ritaprata Banerjee's real TMC claim sharply, with Kunal Ghosh actually reminding Ritaprata Banerjee that it was Mamata Banerjee who signed on the election forms of the rebels.
4: We are the Trinamool Congress, so no question of claiming the party symbol arises.
5: But Mamata Banerjee has also submitted a fresh, list of National Working Committee yesterday. Did you help them?
4: If she has submitted, then it's for the Election Commission to decide. It's a social media party. Everything comes on the social media. And everything, I am telling you that what has happened in the last few days. You announce a name, the name of whom you were announcing, he's sitting with us. The name you were announcing, next day he or she is going away. You are announcing a name, next day he or she is submitting resignation. I am categorically telling you, even in the NWC which is being circulated in the social media, I am very confident there will be fresh resignations. आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए ना, हम लोग कल नेशनल वर्किंग कमेटी का फॉर्मेशन किए हैं, आने वाले 21 दिन के अंदर राज्य स्टेट कमेटी, हर जिला का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट हेड, सब नाम आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल आर विद अस।
6: दिल्ली में जो जमा होना था वो हो गया।
7: यहाँ पे दादा आप लोग कौन कौन जा रहे हैं? और
6: हमारा पार्टी का चेयरपर्सन श्री अरूप राय, हमारा ऑपोजिशन का चीफ व्हिप जनाब अकरुज जवान, डेप्यूटी लीडर श्री जावेद अहमद खान, डेप्यूटी लीडर श्री संदीप शाह और मैं, हम पांच लोग जा रहे हैं।
8: देखिए ये सब, ये सबको हम दोष नहीं देते हैं, दो चार पांच छह सात आठ ये सब कर रहे हैं। अब देखिए, डेढ़ दो महीना हुआ इलेक्शन हुआ, वो अगर टीएमसी है तो उसका नॉमिनेशन के साथ एक फॉर्म ए और एक फॉर्म बी वो जमा किया है, उसमें किसका साइन है? ममता दीदी का। किसका साइन है? अभिषेक बनर्जी का। क्या लिखा है उस साइन से? ये साबित होता है वो लोग तृणमूल कांग्रेस है और उस सिंबल का हकदार है। तो जो लोग का सिग्नेचर के ऊपर वो तृणमूल एमएलए बना है, आज बोल रहा है जो वो असली, इतना गिरा हुआ है सोच।
9: देखिए, हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है, हर चीज का खत्म होना चाहिए। ये जो परिवारवाद खत्म होना चाहिए, हम लोग तो परिवारवाद के सख्त खिलाफ है। तो अगर ये ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी, हाँ वो राजनीतिक नेता, वो बहुत अच्छी लड़ाकू नेत्री थी, इसमें कोई दुराह नहीं है। वो वामपंथियों को हटाई भी थी, इसमें भी दुराह नहीं है। लेकिन उनके बाद उनके जो भतीजे को उन्होंने बैठा दिया नंबर टू करके, तो उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: तो इस मीटिंग की वीडियो जरा आप इसको स्क्रीन पे दिखाएं, आपको पहले पता लगे जशनदीप और स्वपनदीप शर्मा कमिश्नर लुधियाना इस होटल में बैठकर पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं। जो फोरेंसिक लोब रिपोर्टरी बता रहे थे, ये इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के काले धन और रिश्वत के धन के दम जोर पर ये फोरेंसिक की रिपोर्ट बनाने के लिए लुधियाना की वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें ये जो नीली शर्ट में है ये एसपी माफ करना ये कमिश्नर लुधियाना है, और साथ में उनके साथ एसपी जशनदीप सिंह जो कि होटल के अंदर रुके थे, और उस होटल के कमरे के अंदर ये सारी डील हुई। इसके जसप्रीत सिंह जिसने ये सारी डील कराई थी, ये जब जानकारी पुलिस तक पहुंची और कंप्लेंटेंट जसजीत सिंह पहुंचे, उसको पता चला कि मेरी वीडियो एक्सपोज हो गई है, वो अपनी जान माल के बचाने के लिए कि अब मुझे ही मेरा इनकाउंटर ना कर दें, ये जानकारी जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जसप्रीत सिंह के बयानों के ऊपर अंकित जो दिल्ली से और अरुण पंचकूला से है जिन्होंने ये फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराई थी उनको अरेस्ट किया। फोरेंसिक रिपोर्ट जब तैयार कराई जा रही थी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं कैसे एसपी जशनदीप इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये लिख दो, ये पैरा हटा दो, इसको हाईलाइट करके लिख दो कि भगवंत मान नहीं है। मैं चाहता हूं स्क्रीनशॉट दिखाएं, ये वो स्क्रीनशॉट है जो एसपी जशनदीप ने दिए, जिसमें आप पढ़ सकते हैं जल्दी भेजो दो लास्ट पॉइंट का और कंक्लूजन वाले में लिख दो, और लिख दिया एडिटिंग करवा दी है, स्टेटमेंट करवा दी है और उसको हाईलाइट कर दिया है। अगला स्क्रीनशॉट दिखाना, आप इसमें देखें कैसे जशनदीप उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपने क्या करना है। आपने उन्होंने लिखा है डन द करेक्टर इन द वीडियो मैच की फोटोग्राफ और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भगवंत मान डाउनलोडेड फ्रॉम पब्लिक अवेलेबल, ये लिख दो कि हमने करेक्टर मैच कर लिया है जो भगवंत मान की डाउनलोड की पब्लिक अवेलेबल इमेजेस है इंटरनेट पे उनके माध्यम से, इन्हें इस तरह कोट कर दो एंड देन डिनाई, इस तरह कोट करने के बाद डिनाई कर दो कि ये भगवंत मान नहीं है, ये नकली भगवंत मान है, और ये करके सेंड करो, जल्दी सेंड करो। ये सारा कुक्रम आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार बताते हैं, जिनकी कट्टर की ईमानदारी आप देख सकते हैं कि किस तरह रिश्वत के पैसे से श्रीयकाल तख्त साहिब में जो मसला उनके प्रति पड़ा हुआ है, जिसपे अकाल तख्त साहब ने फैसला लिया, सिख दुनिया भर के सिखों की मान उनके भावना के अनुकूल उनकी पीड़ा को देखते हुए, आप कल्पना करिए कि एक ऐसा पाप करने वाले लोग आज इस सिस्टम में नास्तिक हैं जो श्री अकाल तख्त साहिब और सिखों की भावना को दरकिनार करते हुए ठेंगा दिखाते हुए अपने धन बल के ऊपर नकली फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करते हैं, और उस फोरेंसिक रिपोर्ट को पेश कराने के लिए पंजाब पुलिस को का इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब पुलिस की वीडियो आपको दिखाई, पंजाब पुलिस किस तरह से एसपी और कमिश्नर पहुंचते हैं, और उसके बाद में अभी आपको यह भी बता दिखाता हूं कि किस तरह से जिस लड़के से ये वीडियो बनवाई गई, जब उसको ये पता चला कि मसला ये बन गया है, वो पुलिस तक जाता है और अपनी जान की माफी मांग सुरक्षा के लिए किस तरह से इस लड़के ने बनाई, मैं इसका भी आप जरा बयान जरूर सुने एक मिनट का।
1: Officials there, the controversy that's come amid that ongoing political and religious debate in Punjab over the authenticity of the video clip which features the Chief Minister of Punjab, Bhagwant Mann, that has consistently maintained that this is

0: तो राहुल गांधी जी या पॉलिटिकल पार्टीज क्या करे, जब लाखों भविष्य, लाखों छात्रों का, छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होने लगे, जो पढ़ाई करता है, जिसका पूरा परिवार लगा रहता है बच्चों को पढ़ाने में, और पहले ही से पेपर लीक, पहले से सब परिणाम दूसरे को मिलना तय हो जाए, तो आखिर लीडर ऑफ अपोजिशन करे तो क्या करे? सवाल तो खड़ा होता है। अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं होता तो धर्मेंद्र जी से कोई सवाल नहीं पूछता, उनको बधाई देते हैं हम लोग।
1: And let's just listen in to what the Education Minister Dharmendra Pradhan said on the matter.
2: देखा कि जो लोकसभा विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो न केवल कोटा गए बल्कि कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए, उनके हक के लिए पूरे देश में NSUI और जो उनका छात्र संगठन है वो प्रदर्शन करेगा। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो देश की शिक्षा प्रणाली है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।
3: देखिए, मैं राहुल गांधी जी का उस प्रकार की जो रवैया रहा है, मैं सच में बहुत दुखी हूँ कि देश की, हमारा इतना बड़ा पुरानी प्रजातंत्र है, मेरे सामाजिक जीवन में मैं राजनीतिक शास्त्र का एक मूक विद्यार्थी हूँ। मैं उसको, जब मैं बचपन में कॉलेज में था तब उसको मैं अभ्यास करता था, मैं जब जनप्रतिनिधि बना, अब जब मैं एक भूमिका में हूँ, मैं अपना जिम्मेवारी निभाते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। देश में, प्रजातंत्र में, सत्ता और विपक्ष अपना अपना दायित्व निभाते हैं। सत्ता को आलोचना करना, सत्ता को प्रश्न उठाना, ये विपक्ष के दायित्व है, उसको हम स्वीकार भी करते हैं, उसमें से हम ठीक रहते हैं। केवल विपक्ष के नहीं, समाज की, मीडिया की, सोशल थॉट लीडर्स की, इन सब की, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल, इन सब की परामर्श हमारे लिए पथ्य है। लेकिन सबकी एक मर्यादा है, सबकी एक दायित्व भी है। मर्यादा के आरोप लगाना आपके अधिकार है, आपकी दायित्व भी कुछ है। राहुल गांधी जी ने, मैं आपको दो घटना बताऊंगा, जिस प्रकार की उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विशेष करके जो सारे हद को तोड़े। 21 को परीक्षा होगा, राहुल गांधी 3 दिन पहले जाते हैं कोटा में दहशतगर्द खड़ा करने के लिए, मेलोडी करते हैं, बच्चों के मन में भय पैदा कराते हैं।
1: And with that, it's a wrap on this bulletin. News and updates will continue on the other side with Breaking Ground with my colleague Karki Rawat.
4: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना।

0: Congress Chief Minister, what happened to the 1 lakh crore investment which was announced by the Trump media? Here in the so-called Global Summit of the Fourth City, they announced the 1 lakh crore from the Trump media, which was a false and fake investment and announcement. So this road and such kind of theatrics is only for the Greater Hyderabad elections, because the Congress party has not done anything for the Hyderabad infra. The infrastructure has totally very doldrums. The rains are ahead. There is no monsoon preparation also. And here is a chief minister who wants to get some attention on the name of Trump.
1: All right, Krishank, BRS leader there speaking to us and criticizing this move to name a road the Trump Avenue at a time when he's questioning the development that has been undertaken by Congress in Hyderabad. The BJP, on the other hand, slamming the double standards of the Congress party, with Rahul Gandhi criticizing Trump on one hand, and on the other hand, this honor from a Congress government in Telangana. Well, moving on to other news now, and a fresh political controversy has erupted over a viral video allegedly linked to Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, as the Gurugram police have exposed a conspiracy to manipulate evidence by fabricating a fake forensic report. Now, according to investigators, the accused allegedly posed as Punjab government officials and attempted to procure a forensic report supporting a pre-decided conclusion that the video was fake. The police claimed that nearly 10 lakh was allegedly offered to secure a tailored forensic report. The two accused, Arun Mahendru and Ankit, have been arrested. Now, remember, this is a huge political controversy in Punjab. This development has triggered a fresh political confrontation in Punjab, with BJP Punjab Chief Kewal Singh Dhillon terming the episode as a major moral and constitutional crisis. Senior Akali leader Bikram Singh Majithia has demanded the Chief Minister's immediate resignation. This is a huge controversy involving a video allegedly of Bhagwant Mann, where he's shown sprinkling alcohol on the photos of gurus.
2: देखो गुड़गांव पुलिस में शिकायत मिली थी जसवीर की. जसवीर ने शिकायत दर्ज कराई थी अपनी, तो इस शिकायत के संबंध में आगे गुड़गांव पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, तो उसमें दो लोगों को अभी हमने गिरफ्तार किया जाएगा. उनको हमने हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें अंकित नाम का बंदा है. अंकित जो कि NIA में साइबर एक्सपर्ट है, ये एडहॉक पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है. जो और अंकित नाम का बंदा है, तो दूसरा हमारे पास इसको हमने दोनों को हिरासत में लिया है. इसमें
3: अकाल तख्त साहिब ने अपने माध्यम से इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कराने के लिए फोरेंसिक की दो लेबोरेटरी से जांच कराई, जिसकी जांच की रिपोर्ट 27 मई और 13 जून को आने के बाद ये कंक्लूड कर लिया गया, स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो भी असली है, कोई AI जनरेटेड नहीं है. और इस वीडियो में जो दिख रहे हैं भगवंत मान, जो उन्होंने पाप किया है, वो ना माफ करने योग है. इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया. सिख रिपोर्ट जब तैयार कराई जा रही थी, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं कैसे SP जशनदीप इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये लिख दो, ये पैरा हटा दो, इसको हाईलाइट करके लिख दो कि भगवंत मान नहीं है. मैं चाहता हूं स्क्रीनशॉट दिखाएं. ये वो स्क्रीनशॉट है जो SP जशनदीप ने दिए, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, जल्दी भेजो दो लास्ट पॉइंट का और कंक्लूजन वाले में लिख दो. और लिख दिया, एडिटिंग करवा दी है, स्टेटमेंट करवा दी है और उसको हाईलाइट कर दिया है. अगर आज सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो बेअदबी कानून पंजाब की विधानसभा में पास हुए, आज उनका लिटमस टेस्ट है, क्या उन्हीं बेअदबी कानूनों के ऊपर पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके, रजिस्टर करके, क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान, ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे? दुनिया भर के सिख आज पूछ रहे हैं, सिख जथेबंदियां बार बार सवाल कर रही हैं.

0: चालू है, लेकिन उसके साथ में जो कचरा आ रहा है जाली के ऊपर उसको भी निकालने का काम पूरा यहाँ पे चालू है। आपने यहाँ पे देखा रेलवे की जो कूड़ा यहाँ से भी निकाल के कचरा लेके जाने का काम चालू है। पूरा मुंबई महानगर पालिका वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और जो जाली है उसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं।
1: सुबह से ही मुंबई में बरसात की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल मैं मुंबई के दादर ईस्ट परिसर में उपस्थित हूँ। आप मेरे पीछे देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार बरसात जो है वो मुंबई में हो रही है, उसको लेकर ये जो झाड़ है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जड़ से ये झाड़ दुर्घटना होने की वजह से, इसमें जो ड्राइवर थे उनकी भी जान जो है वो धोखे में आ चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह के वक्त वो यहाँ पे आराम कर रहे थे तब जो है वो झाड़ यहाँ पे गिरा। जिनका गाड़ी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दुर्घटना कब हुई और वो उस दौरान कहाँ थे। सर मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये गाड़ी डैमेज हो चुकी है, आप उस दौरान कहाँ थे और जब ये डैमेज हुआ उस दौरान आप कहाँ थे?
2: मैं गाड़ी के अंदर ही था, गाड़ी के अंदर ही था, और गाड़ी का झाड़ जब गिर गया ना, मेरे को थोड़ा नींद लग गया था, जब झाड़ गिर गया था तो लोग मेरे को गिलास तोड़ के बाहर निकाला।
3: द मोस्ट अवेटेड मानसून सीजन हैज ऑफिशियली एंड फाइनली बिगन इन मुंबई, बट मुंबई, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर फुल ऑफ वाटर इन इट्स फर्स्ट रेन ओनली। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट सायन गांधी मार्केट एरिया। दिस इज एन हॉटस्पॉट एरिया, इवन इफ इट रेन्स फॉर अ लिटिल वाइल दिस एरिया गेट्स फ्लडेड विद वाटर, एंड राइट नाउ द सिचुएशन इज सेम बिकॉज इट इज रेनिंग इन मुंबई सिंस मॉर्निंग। इवन येस्टरडे इट वॉज रेनिंग, बट टूडे सिंस मॉर्निंग इट्स रेनिंग हैविली, एंड दिस वेरी हॉटस्पॉट एरिया ऑफ मुंबई दैट इज द सायन गांधी मार्केट एरिया इज फ्लडेड with water. You can see right in front of me a BST bus is shut down. In front of the BST bus a tempo truck is also shut down. Also the traffic is jammed because of this waterlogging. The BMC had stated that this year Mumbai will not face waterlogging because the nalas have been cleared up, but we can see the reality check over here.
4: It is continuously raining since overnight and the situation is getting difficult for Mumbaikars. We are present here at Western Express Highway in the Villeparle area, right next to the airport, and you can see the situation of Western Express Highway, one of the important highway which is connecting suburban Mumbai to South Mumbai, and you can already see the congestion, the traffic congestion on the highway clearly. And this is an important route which connects suburban Mumbai to South Mumbai, and Mumbaikars are out on the road traveling towards their offices, and this route becomes very prominent and important. As per the updated warning by IMD, that orange alert is been issued for the next 3 hours, and more importantly, precaution needs to be taken by the Mumbaikar is an advisory issued. More importantly, the low-lying areas, eastern and western suburbs and other pockets have already received are already waterlogged at this given point of time, and you can clearly see the traffic congestion.
5: And with monsoon mayhem in Mumbai, a political showdown has started on the water logging that's being experienced in Maharashtra after the heavy rainfall. Shiv Sena UBT MLA Aditya Thackeray launched a sharp attack on the Maharashtra government, alleging a complete lack of monsoon preparedness, and accused the BJP-led administration of neglecting urban infrastructure. Thackeray said the focus should be on governance and development and not on politics and breaking parties. Joining the criticism, NCP-SP also questioned the preparedness of the civic administration, saying that the BMC appeared completely unready to handle the heavy rains.
0: आप लोगों को मुंबई करने चुन के यहाँ पे भेजा है, घर में बैठ के काम नहीं होता है, बारिश में भीगना पड़ता है, आना पड़ता है, रोड में आना चाहिए। हमारी मीडिया के प्रतिनिधि भी आज रोड पे खड़े हैं, इस तरह से काम होता है। मुंबई करने अभी तक का मेयर को इस तरह से देखा नहीं है, ना ही मीडिया ने देखा है। यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, पूरे 4 मंथ्स मैं सिर्फ लोगों को बारिश में रोड पे ही दिखने वाली हूँ। मेरे जैसा काम करने की ताकत रखो, घर पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मुंबई का पूरा आढ़ावा मत लिया करो।
6: Yeah, I heard the mayor of Mumbai saying that, you know, you shouldn't do politics regarding this monsoon issue that is going on. You know, Mumbai is submerged.

0: Is Vijay linking the celebrations on one hand to the fact that the recent ammonia gas tragedy took place in Tamil Nadu, in which several people died? The DMK questioned why Vijay did not visit the victims or their families, despite 9 reported deaths and around 60 people being hospitalized in the incident, instead celebrating his birthday with Trisha. Politics taking place over NEET only intensifying a day after the Education Minister Dharmendra Pradhan slammed Rahul Gandhi. The Congress has hit back strongly. In an interview with NDTV yesterday, the Union Minister Dharmendra Pradhan slammed Rahul Gandhi, accusing him of scaring students and promoting anarchy. After his, he addressed students in Kota. He also said that Rahul is derailing the exam preparations and playing low-level politics. Senior Congress leader Salman Khurshid has hit back at Pradhan, saying that he lacks understanding to grasp Rahul Gandhi's point. He also challenged the minister to sit for the NEET exam himself and show how it is done.
1: Rahul Gandhi ki baat ko wo samajhte hain. Unme itni samajh hai ki wo Rahul Gandhi ki baat samajh jaye. अगर इतनी समझ है तो एक दफा वो नीट में खुद बैठ के बताएं कि नीट में कैसे किया जाता है। ट्रंप ने
2: तो बच्चों के मन में जब एग्जाम में पेपर लीक हो रहा हो और लगातार हो रहा हो, बरसों से हो रहा हो, तो राहुल गांधी जी या पॉलिटिकल पार्टीज क्या करे? जब लाखों भविष्य, लाखों छात्रों का, छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होने लगे, जो पढ़ाई करता है, जिसका पूरा परिवार लगा रहता है बच्चों को पढ़ाने में, और पहले ही से पेपर लीक, पहले से सब परिणाम दूसरे को मिलना तय हो जाए, तो आखिर लीडर ऑफ अपोजिशन करे तो क्या करे? सवाल तो खड़ा होता है। अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं होता तो धर्मेंद्र जी से कोई सवाल नहीं पूछता, उनको बधाई देते हम लोग।
0: Right, so the Congress, they're slamming Dharmendra Pradhan. Let's listen into what the education minister had to tell NDTV.
3: देखा कि जो लोकसभा विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन न केवल कोटा गए बल्कि कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए, उनके हक के लिए पूरे देश में NSUI और जो उनका छात्र संगठन है वो प्रदर्शन करेगा। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो देश की शिक्षा प्रणाली है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।
4: देखिए, मैं राहुल गांधी जी का उस प्रकार की जो रवैया रहा है, मैं सच में बहुत दुखी हूँ कि देश की, हमारा इतना बड़ा पुरानी प्रजातंत्र है, मैं मेरे सामाजिक जीवन में मैं राजनीतिक शास्त्र का एक मुख्य विद्यार्थी हूँ। मैं उसको जब मैं बचपन में कॉलेज में था तब उसको मैं अभ्यास करता था। मैं जब जनप्रतिनिधि बना, अब जब मैं एक भूमिका में हूँ, मैं अपना जिम्मेवारी निभाते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। देश में प्रजातंत्र में सत्ता और विपक्ष अपना अपना दायित्व निभाते हैं। सत्ता को आलोचना करना, सत्ता को प्रश्न उठाना, ये विपक्ष की दायित्व है, उसको हम स्वीकार भी करते हैं, उसमें से हम ठीक रहते हैं। केवल विपक्ष के नहीं, समाज की, मीडिया की, सोशल थॉट लीडर्स की, इन सब की, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल, इन सब की परामर्श हमारे लिए पथ्य है। लेकिन सबकी एक मर्यादा है, सबकी एक दायित्व भी है। मर्यादा के आरोप लगाना आपके अधिकार है, आपकी दायित्व भी कुछ है। राहुल गांधी जी ने, मैं आपको दो घटना बताऊंगा, जिस प्रकार की उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विशेष करके जो सारे हद को तोड़े। 21 को परीक्षा होगा, राहुल गांधी 3 दिन पहले जाते हैं कोटा में दहशतगर्द खड़ा करने के लिए, मेलोडी करते हैं, बच्चों के मन में भय पैदा कराते हैं।
0: With that, time for us to slip into a short break. More news and updates on the other side. Stay with us.

0: पे जब वो दौरा करने पहुंची उसके दौरान जो अधिकारियों से पूछताछ करी थी कि आखिर जिस तरीके से जो निचले स्तर पे पानी जमा था वहाँ पर उपाय योजना क्या कुछ किए गए, लेकिन इस दौरान जब मेयर जो है अधिकारियों से बात करी थी इसी दौरान एक जो व्यक्ति है वो वहाँ से जाने की क्रॉस कर रहा था और इसी दौरान जो वहाँ पे जो है नाला खुली होने की वजह से वो उस नाले में मेयर के सामने ही गिरता, जहाँ पर मेयर ने तुरंत जो है एक्शन लेते हुए उस अधिकारी की वहीं पर क्लास लगा। और इस दौरान अगर आप देखने की कोशिश करें तो अधिकारियों के ऊपर जो है मेयर का गाज गिरते हुए देखने को नजर आ रहा है और मेयर ने स्पष्ट कहा है कि इस तरीके से अगर मुंबई में कहीं पर भी अगर इस तरीके से मैन होल अगर खुले रहेंगे तो वो जो वहां का वार्ड अधिकारी होगा वो भी सस्पेंड होगा, ऐसा स्पष्ट निर्देश यहां पर मुंबई के मेयर ने। लेकिन तमाम तरीके के सवाल उपस्थित रहे, क्या जिस तरीके से मुंबई के मेयर अगर इस तरीके से दौरा कर रहे और उन्हीं के सामने अगर एक व्यक्ति जब उनके सामने से क्रॉस होने की कोशिश कर रहा और नाला खुली होने की वजह से उस नाले में गिरता है जहां पर मुंबई के मेयर खुद उपस्थित है, लेकिन जिस तरीके से दावा किया जाता है नाले को सफाई को लेकर यह भी एक सवाल सबसे बड़ा उपस्थित होगा, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई में जब मूसलाधार बरसात होती है तो मुंबई के अनेक जो निचले स्तर जो भाग है वहां पे हमेशा जो है वो पानी जमा होता है, लेकिन जब यह व्यक्ति यहां से क्रॉस करने की कोशिश करता है उसी दौरान वो उस नाले में गिरता है जहां पर दोबारा उसे बाहर भी निकाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुंबई की मेयर जिस तरीके से दावा करती है कि नाला जो है वो 90% जो है साफ हो चुका है, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि जगह जगह पर जिस तरीके से नाले के जो मेन होल है वो अभी भी खुले, तो लेकिन फिलहाल स्पष्ट जो है फिलहाल इस व्यक्ति को ज्यादा यहाँ पे इंजरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुंबई के मेयर के सामने इस तरीके से गिरना।
1: जी रिजवान, एब्सोल्युटली एन ओपन मैन होल्स इज अ ह्यूज वरी इन सिटीज एंड यू नो द आयरनी ऑफ इट हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द मेयर, द फैक्ट दैट शी इज देयर एट द मोमेंट एंड राइट इन फ्रंट ऑफ हर देयर इज दिस ओपन मैन होल इन व्हिच अ मैन एक्चुअली फॉल्स इन एंड दिस इज वन ऑफ द बिग कंप्लेंट्स दैट द पब्लिक ऑफन हैज, पीपल हैव डाइड आफ्टर फॉलिंग इन टू ओपन मैन होल्स। सो लेट्स टेक यू थ्रू ऑल द डेवलपमेंट्स इन मुंबई। मुंबई वंस अगेन बैटलिंग द फ्यूरी ऑफ द मॉनसून, हैवी रेनफॉल सिंस अर्ली मॉर्निंग व्हिच हैज लेफ्ट सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटी वाटर लॉग्ड, व्हाइल अथॉरिटीज इशूड एडवाइस for commuters as vehicles struggled through the flooded roads and low-lying areas. A reported inundation, some of that water has now receded. The downpour also led to multiple rain-related incidents. In Dadar, a tree fell on a parked car following strong winds and heavy rain causing damage to the vehicle. And in Vikhroli West, a retaining wall adjacent to a residential building also collapsed. The India Meteorological Department has warned of continued rainfall, thunderstorms and gusty winds across the city with a weather alert remaining in place.
2: मैं यहाँ पे हिंदा माता में खड़ी हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 पंप फुल फ्लेज में यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, पूरा रोड का जितना भी एक्सेस वाटर यहाँ पे आ रहा है ये पूरा आप देख रहे हैं यहाँ से जाने का काम चालू है, लेकिन इसके साथ में जो कचरा आ रहा है जाली के ऊपर उसको भी निकालने का काम पूरा यहाँ पे चालू है। आपने यहाँ पे देखा रेलवे की जो और यहाँ से भी निकाल के कचरा लेके जाने का काम चल रहा है, पूरा मुंबई महानगर पालिका वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं यहाँ पे और जो जाली है उसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं।
0: सुबह से ही मुंबई में बरसात की शुरुआत हो चुकी है, फिलहाल मैं मुंबई के दादर ईस्ट परिसर में उपस्थित हूँ। आप मेरे पीछे देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार बरसात जो है वो मुंबई में हो रही है उसको लेकर ये जो झाड़ है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जड़ से ये झाड़ दुर्घटना होने की वजह से इसमें जो ड्राइवर थे उनकी भी जान जो है वो धोखे में आ चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह के वक्त वो यहाँ पे आराम कर रहे थे तब जो है वो झाड़ यहाँ पे गिरा। जिनका गाड़ी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दुर्घटना कब हुई और वो उस दौरान कहाँ थे। सर मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये गाड़ी डैमेज हो चुकी है आप उस दौरान कहाँ थे और जब ये डैमेज हुआ उस दौरान आप कहाँ थे?
3: मैं गाड़ी के अंदर ही था, गाड़ी के अंदर ही था और गाड़ी का झाड़ जब गिर गया ना मेरे को थोड़ा नींद लग गया था, जब झाड़ गिर गया था तो लोग मेरे को गिलास तोड़ के बाहर निकाला।
4: The most awaited monsoon season has officially and finally begun in Mumbai, but Mumbai, the streets of Mumbai are full of water in its first rain only. Right now I am standing at Sion Gandhi Market area. This is an hotspot area. Even if it rains for a little while, this area gets flooded with water. And right now the situation is same because it is raining in Mumbai since morning. Even yesterday it was raining, but today since morning it's raining heavily. And this very hotspot area of Mumbai, that is the Sion Gandhi Market area, is flooded with water. You can see right in front of me a BST bus is shut down. In front of the BST bus a tempo truck is also shut down. Also the traffic is jammed because of this waterlogging. The BMC had stated that

0: facing the same situation like any common Mumbaikar. We are also Mumbaikars. But the point here is the BMC sat and did nothing before the monsoons. The incumbent government did nothing in the, you know, for the preparation of the monsoons. And now they are blaming everybody else. What were they doing when they know that monsoons are going to arrive?
1: All right, from Maharashtra now to the big controversy in Punjab, where a fresh political controversy has erupted over the viral video allegedly linked to Punjab Chief Minister Bhagwant Mann. This as the Gurugram police exposed a conspiracy to manipulate evidence by fabricating a fake forensic report. According to investigators, the accused allegedly posed as Punjab government officials and attempted to procure a forensic report supporting a pre-decided conclusion that the video purportedly of the Chief Minister was a fake. Police claim that nearly 10 lakh was allegedly offered to secure a tailored forensic report. The two accused, Arun Mahendaru and Ankit, have been arrested. The development has triggered a fresh political confrontation with the BJP Punjab chief, terming the episode a major moral and constitutional crisis, and Akali leader Bikram Singh Majithia demanding the chief minister's immediate resignation.
2: देखो गुड़गांव पुलिस में शिकायत मिली थी जसवीर की. जसवीर ने शिकायत दर्ज कराई थी अपनी, तो इस शिकायत के संबंध में आगे गुड़गांव पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, तो उसमें दो लोगों को अभी हमने गिरफ्तार किया जाएगा. उनको हमने हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें अंकित नाम का बंदा है. अंकित जो कि NIA में साइबर एक्सपर्ट है, ये एडहॉक पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है. जो और अंकित नाम का बंदा है, तो दूसरा हमारे पास, इसको हमने दोनों को हिरासत में लिया है. इसमें
3: अकाल तख्त साहिब ने अपने माध्यम से इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कराने के लिए फोरेंसिक की दो लेबोरेटरी से जांच कराई, जिसकी जांच की रिपोर्ट 27 मई और 13 जून को आने के बाद ये कंक्लूड कर लिया गया, स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो भी असली है, कोई AI जनरेटेड नहीं है. और इस वीडियो में जो दिख रहे हैं भगवंत मान, जो उन्होंने पाप किया है वो ना माफ करने योग है. इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया. रिपोर्ट जब तैयार कराई जा रही थी, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं कैसे SP जशनदीप इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये लिख दो, ये पैरा हटा दो, इसको हाईलाइट करके लिख दो कि भगवंत मान नहीं है. मैं चाहता हूं स्क्रीनशॉट दिखाएं. ये वो स्क्रीनशॉट है जो SP जशनदीप ने दिए, जिसमें आप पढ़ सकते हैं जल्दी भेजो दो लास्ट पॉइंट का और कंक्लूजन वाले में लिख दो, और लिख दिया एडिटिंग करवा दी है, स्टेटमेंट करवा दी है और उसको हाईलाइट कर दिया है. अगर आज सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो बेअदबी कानून पंजाब की विधानसभा में पास हुए, आज उनका लिटमस टेस्ट है, क्या उन्हीं बेअदबी कानूनों के ऊपर पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे? दुनिया भर के सिख आज पूछ रहे हैं, सिख जथेबंदियां बार बार सवाल कर रही हैं, ये सब कुछ सच्चाई आने के बाद जैसे सांप सूंघ जाता है, भगवंत मान भी चुप करके बैठ गए, अरविंद केजरीवाल भी दुम दबाकर बैठ गए.
4: पंजाब अज इतिहास के सब तो गंभीर नैतिक संविधानिक संकट विचों निकल रहा है. श्री अकाल तख्त साहब वालों गुरु दोखी पंथक विरोधी ऐलाने जाने तो बाद भी भगवंत मान कुर्सी नहीं नाल चुंबड़े हुए ने. मुख्यमंत्री पंजाब वालों पहला साढ़े गुरु साहबाना का अपमान किया गया, बाद विच साढ़े सर्वोच्च स्थान श्री अकाल तख्त की बेअदबी की गई. असी पहला भी कहा सी कि मुख्यमंत्री नूं अपना इस्तीफा दे के अकाल तख्त सामने भुल बख्शा लेनी चाहीदी है, पर मुख्यमंत्री ने अपनी गलती मनण दी बजाए सारियां नैतिक कदरां कीमतां नूं छिक्के टक दित्ता.
5: होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपनी पुलिस DGP गौरव

0: निकाल के कचरा लेके जाने का काम चालू है। पूरा मुंबई महानगर पालिका वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और जो जाली है उसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं।
1: सुबह से ही मुंबई में बरसात की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल मैं मुंबई के दादर ईस्ट परिसर में उपस्थित हूं। आप मेरे पीछे देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार बरसात जो है वो मुंबई में हो रही है, उसको लेकर ये जो झाड़ है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जड़ से ये झाड़ दुर्घटना होने की वजह से, इसमें जो ड्राइवर थे उनकी भी जान जो है वो धोखे में आ चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह के वक्त वो यहाँ पे आराम कर रहे थे तब जो है वो झाड़ यहाँ पे गिरा। जिनका गाड़ी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दुर्घटना कब हुई और वो उस दौरान कहाँ थे। सर मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये गाड़ी डैमेज हो चुकी है, आप उस दौरान कहाँ थे और जब ये डैमेज हुआ उस दौरान आप कहाँ थे?
2: मैं गाड़ी के अंदर ही था, गाड़ी के अंदर ही था, और गाड़ी का झाड़ जब गिर गया ना, मेरे को थोड़ा नींद लग गया था, जब झाड़ गिर गया था तो लोग मेरे को गिलास तोड़ के बाहर निकाला।
3: द मोस्ट अवेटेड मॉनसून सीजन हैज ऑफिशियली एंड फाइनली बिगन इन मुंबई, बट मुंबई, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर फुल ऑफ वाटर इन इट्स फर्स्ट रेन ओनली। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट सायन गांधी मार्केट एरिया। दिस इज एन हॉटस्पॉट एरिया, इवन इफ इट रेन्स फॉर लिटिल वाइल दिस एरिया गेट्स फ्लडेड विद वाटर, एंड राइट नाउ द सिचुएशन इज सेम बिकॉज इट इज रेनिंग इन मुंबई सिंस मॉर्निंग। इवन येस्टरडे इट वॉज रेनिंग, बट टूडे सिंस मॉर्निंग इट्स रेनिंग हैविली, एंड दिस वेरी हॉटस्पॉट एरिया ऑफ मुंबई दैट इज द सायन गांधी मार्केट एरिया इज फ्लडेड विद वाटर। यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ मी अ BST बस इज वेटिंग, इज शट डाउन इन फ्रंट ऑफ द BST बस। अ टेम्पो ट्रक इज ऑल्सो शट डाउन, ऑल्सो द ट्रैफिक इज जैम बिकॉज ऑफ दिस वाटर लॉगिंग। The BMC had stated that this year Mumbai will not face waterlogging because the nalas have been cleared up, but we can see the reality check over here.
4: It is continuously raining since overnight and the situation is getting difficult for Mumbaikers. We are present here at Western Express Highway in the Ville Parle area right next to the airport, and you can see the situation of Western Express Highway, one of the important highway which is connecting suburban Mumbai to South Mumbai, and you can already see the congestion, the traffic congestion on the highway clearly. And this is an important route which connects suburban Mumbai to South Mumbai, and Mumbaikers are out on the road traveling towards their offices, and this route becomes very prominent and important as per the updated warning by IMD that orange alert is being issued for the next 3 hours, and more importantly precaution needs to be taken by the Mumbaikar is an advisory issued. More importantly, the low-lying areas, eastern and western suburbs and other pockets have already received are already waterlogged at this given point of time, and you can clearly see the traffic congestion.
5: Is of course a political showdown that has started just as the monsoon season begins, with waterlogging that's being reported from Maharashtra after that rainfall. We have Aditya Thackeray there launching a very sharp attack on the government, making very valid points here, alleging a complete lack of monsoon preparedness and accusing the BJP-led administration of neglecting urban infrastructure. Aditya Thackeray has said that the focus should be on governance and not on politics. Joining the criticism is, of course, the NCP-SP. This is the Sharad Pawar faction that has questioned the preparedness of the civic administration, saying that the BMC appeared completely not ready, absolutely not ready to handle the situation, despite claims being made that they are going to be monsoon ready this time around.
0: पंपिंग पंप के यहाँ पे ही खड़ी हूँ, घर पे बैठ के नहीं होता है। मैं वापस एक बार बोल रही हूँ, हमारी किशोरी ताई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस घर पे ले रही है। आप लोक प्रतिनिधि हो, आप लोगों को मुंबई करने चुन के यहाँ पे भेजा है, घर पे बैठ के काम नहीं होता है, बारिश में भीगना पड़ता है, आना पड़ता है, रोड में आना पड़ता है। हमारी मीडिया के प्रतिनिधि भी आज रोड पे खड़े, इस तरह से काम होता है मुंबई करने? अभी तक का मेयर को इस तरह से देखा नहीं है, नहीं मीडिया ने देखा है। यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, पूरे 4 मंथ मैं सिर्फ लोगों को बारिश में रोड पे ही दिखने वाली हूँ। मेरे जैसा काम करने की ताकत रखो, घर पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मुंबई का पूरा आढ़ावा मत लेके लिया करो।
6: Yeah, I heard the mayor of Mumbai saying that, you know, you shouldn't do politics regarding this monsoon issue that is going on. You know, Mumbai is submerged, flooding around everywhere. The question is not politics, it's about governance. Had the BMC worked on it before the monsoons, we wouldn't have been in this situation.

0: also arrange the water for the farmers also. Till the tails, we are able to re-send the water so that the farmers should not face problem. So we made a lot of development in the state. I will always be in the public because the people have made me. I am the man of public and I will remain in the public.
1: Right, we just heard the response of Bhagwant Mann there saying that the opposition's found ways and grounds to criticize me and I'll continue working the way I really have been working in the past. And that is Bhagwant Mann there talking about that fake video. And of course, when we talk about the controversy that's erupted over that viral video allegedly linked to the chief minister, as Gurugram police have exposed this conspiracy to manipulate evidence by fabricating a fake forensic report. According to investigators, the accused allegedly posed as Punjab government officials and attempted to procure a forensic report supporting a pre-decided conclusion. The police claim that nearly 10 lakh rupees was allegedly offered to secure a tailored forensic report. The two accused have now been arrested by the Gurugram police, and the development that has triggered a fresh political confrontation in the state of Punjab. The BJP Punjab chief has in fact termed the episode a major moral and constitutional crisis. We have seen Akali leader Bikram Singh Majithia has demanded the chief minister's resignation, and that too instantly and immediately so.
2: देखो गुड़गांव पुलिस में शिकायत मिली थी जसवीर की. जसवीर ने शिकायत दर्ज कराई थी अपनी, तो इस शिकायत के संबंध में आगे गुड़गांव पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, तो उसमें दो लोगों को अभी हमने गिरफ्तार किया जाएगा. उनको हमने हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें अंकित नाम का बंदा है. अंकित जो कि NIA में साइबर एक्सपर्ट है, ये एडहॉक पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है जो, और अंकित नाम का बंदा है. तो दूसरा हमारे पास, इसको हमने दोनों को हिरासत में लिया है.
3: तो अकाल तख्त साहिब ने अपने माध्यम से इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कराने के लिए फोरेंसिक की दो लेबोरेटरी से जांच कराई, जिसकी जांच की रिपोर्ट 27 मई और 13 जून को आने के बाद ये कंक्लूड कर लिया गया, स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो भी असली है, कोई AI जनरेटेड नहीं है. और इस वीडियो में जो दिख रहे हैं भगवंत मान, जो उन्होंने पाप किया है वो ना माफ करने योग है. इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया. सिख रिपोर्ट जब तैयार कराई जा रही थी, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं कैसे SP जशनदीप इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये लिख दो, ये पैरा हटा दो, इसको हाईलाइट करके लिख दो कि भगवंत मान नहीं है. मैं चाहता हूं स्क्रीनशॉट दिखाएं. ये वो स्क्रीनशॉट है जो SP जशनदीप ने दिए, जिसमें आप पढ़ सकते हैं जल्दी भेजो दो लास्ट पॉइंट का और कंक्लूजन वाले में लिख दो, और लिख दिया एडिटिंग करवा दी है, स्टेटमेंट करवा दी है और उसको हाईलाइट कर दिया है. अगर
4: पंजाब आज इतिहास के सब तो गंभीर नैतिक संविधानिक संकट विचों निकल रहा है. श्री अकाल तख्त साहब वालों गुरु दोखी पंथक विरोधी ऐलाने जाने तो बाद भी भगवंत मान कुर्सी नहीं नाल चुंबड़े हुए ने. मुख्यमंत्री पंजाब वालों पहला साढ़े गुरु साहबाना का अपमान किया गया, बाद विच साढ़े सर्वोच्च स्थान श्री अकाल तख्त की बेअदबी की गई. असी पहला भी कहा सी कि मुख्यमंत्री नू अपना इस्तीफा दे के अकाल तख्त साहब सामने भुल बख्शा लेनी चाहिदी है, पर मुख्यमंत्री ने अपनी गलती मनण की बजाय सारिया नैतिक कदरां कीमतां नू छिके ठग.
5: होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपनी पुलिस DGP गौरव यादव, टेम्पररी DGP, अपने स्वपन शर्मा कमिश्नर ऑफ पुलिस, SP साइबर क्राइम जशनदीप, उनको इस्तेमाल करके एक फेक रिपोर्ट तैयार कराएं. FIR दर्ज हुई है, यह आज है गुड़गांव पुलिस ने कर दिया. मैं धन्यवादी हूँ और मैं चाहूंगा कि इनकी इमीडिएटली अरेस्ट होए, भगवंत मान इस्तीफा दे।
6: जब श्री अकाल तख्त साहब ने उनको बुलाया था और उनके सामने वो अभद्रता वाली, अश्लीलता वाली, अनैतिक कृत्य करने वाली, बेदबी करने वाली वीडियो रखी थी, तो उन्होंने उसको डिनायल करते हुए कहा था कि ये वीडियो गलत है, एआई से निर्मित है, टेम्पर्ड है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उन्हीं की, भगवंत मान की रिक्वेस्ट पर ही श्री अकाल तख्त साहब ने दो इंडिपेंडेंट एजेंसियों से उसकी जांच कराई और जांच में ये स्पष्ट हो गया कि वीडियो ना तो टेम्पर्ड है ना एआई से निर्मित है। और उसी के आधार पर श्री अकाल तख्त साहब ने भगवंत मान को गुरु दोखी, पंथ विरोधी करार दिया। उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री के पद पर रहे।
7: वीडियो की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। अब उसके बाद बौखलाहट में भाजपा हाथ पैर मार रही है। अगर फर्जी रिपोर्ट बनानी होती तो पंजाब की पुलिस पंजाब में बनवा लेती, उसको गुड़गांव आने की क्या जरूरत थी।
1: Switching tracks now to more news coming about, and that is the politics that has erupted over the NEET re-exam. A day after the education minister Dharmendra Pradhan slammed Rahul Gandhi, the Congress has now hit back. Do you remember in an interview with NDTV just yesterday, it was Dharmendra Pradhan slamming Rahul Gandhi, accusing him of scaring students and basically promoting, you know, this fear psychosis among students. He also said that Rahul Gandhi is derailing exam preparations and playing low-level politics. Then we also have the senior leader of the Congress party, Salman Khurshid, hitting back at Dharmendra Pradhan, saying that he lacks the understanding to basically know what Rahul Gandhi is really saying here. The point that is being made by Rahul Gandhi is totally not being understood. He also challenged the minister to sit for an exam, the NEET exam himself, and show how it's really done.
8: नहीं नहीं, वो राहुल गांधी की बात को वो समझते हैं, उनमें इतनी समझ है कि वो राहुल गांधी की बात समझ जाएं। अगर इतनी समझ है तो एक दफा वो नीट में खुद बैठ के बताएं कि नीट में कैसे किया जाता है। ट्रंप ने
9: तो बच्चों के मन में, जब एग्जाम में पेपर लीक हो रहा हो और लगातार हो रहा हो, बरसों से हो रहा हो, तो राहुल गांधी जी या पॉलिटिकल पार्टीज क्या करें? जब लाखों भविष्य, लाखों छात्रों का, छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होने लगे, जो पढ़ाई करता है, जिसका पूरा परिवार लगा रहता है बच्चों को पढ़ाने में, और पहले ही से पेपर लीक, पहले से सब परिणाम दूसरे को मिलना तय हो जाए, तो आखिर लीडर ऑफ अपोजिशन करे तो क्या करे? सवाल तो खड़ा होता है। अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं होता तो धर्मेंद्र जी से कोई सवाल नहीं पूछता, उनको बधाई देते हैं हम लोग।
1: Now all this is in reaction to what was really said by the education minister on NDTV. Let's get you an excerpt of what has been said while he was targeting Rahul Gandhi in that interview.
10: देखा कि जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो न केवल कोटा गए बल्कि कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए, उनके हक के लिए पूरे देश में NSUI और जो उनका छात्र संगठन है वो प्रदर्शन करेगा। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो देश की शिक्षा प्रणाली है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।
11: देखिए, मैं राहुल गांधी जी का उस प्रकार की जो रवैया रहा है, मैं सच में बहुत दुखी हूँ कि देश की, हमारा इतना बड़ा पुरानी प्रजातंत्र है, मैं मेरे सामाजिक जीवन में मैं राजनीतिक शास्त्र का एक मुख्य विद्यार्थी हूँ। मैं उसको, जब मैं बचपन में कॉलेज में था तब उसको मैं अभ्यास करता था। मैं जब जनप्रतिनिधि बना, अब जब मैं एक भूमिका में हूँ, मैं अपना जिम्मेवारी निभाते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। देश में, प्रजातंत्र में, सत्ता और विपक्ष अपना अपना दायित्व निभाते हैं। सत्ता को आलोचना करना, सत्ता को प्रश्न उठाना, ये विपक्ष की दायित्व है, उसको हम स्वीकार भी करते हैं, उसमें से हम ठीक रहते हैं। केवल विपक्ष के नहीं, समाज की, मीडिया की, सोशल थॉट लीडर्स की, इन सब की, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल, इन सब की परामर्श हमारे लिए पथ्य है। लेकिन सबकी एक मर्यादा है, सबकी एक दायित्व भी है। मर्यादा के आरोप लगाना आपके अधिकार है, आपकी दायित्व भी कुछ है। राहुल गांधी जी ने, मैं आपको दो घटना बताऊंगा, जिस प्रकार की उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विशेष करके जो सारे हद को तोड़े। 21 को परीक्षा होगा, राहुल गांधी 3 दिन पहले जाते हैं कोटा में दहशतगर्द खड़ा करने के लिए, मेलोडी करते हैं, बच्चों के मन में भय पैदा कराते हैं।
1: And now we're slipping into a very short break. Back with a whole lot

0: का पूरा परिवार लगा रहता है बच्चों को पढ़ाने में, और पहले ही से पेपर लीक पहले से सब परिणाम दूसरे को मिलना तय हो जाए, तो आखिर लीडर ऑफ अपोजिशन करे तो क्या करे? सवाल तो खड़ा होता है। अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं होता तो धर्मेंद्र जी से कोई सवाल नहीं पूछता, उनको बधाई देते हैं हम लोग।
1: All right, so the Congress, they're slamming Dharmendra Pradhan and saying that he's not understanding the point that Rahul Gandhi was making. Let's listen into that interview where Dharmendra Pradhan, speaking to NDTV, accused Rahul Gandhi of scaring students and promoting anarchy.
2: देखा कि जो लोकसभा विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो न केवल कोटा गए बल्कि कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए, उनके हक के लिए पूरे देश में NSUI और जो उनका छात्र संगठन है वो प्रदर्शन करेगा। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो देश की शिक्षा प्रणाली है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।
3: देखिए, मैं राहुल गांधी जी का उस प्रकार की जो रवैया रहा है, मैं सच में बहुत दुखी हूँ कि देश की हमारा इतना बड़ा पुरानी प्रजातंत्र है। मैं मेरे सामाजिक जीवन में मैं राजनीतिक शास्त्र का एक मुख्य विद्यार्थी हूँ। मैं उसको जब मैं बचपन में कॉलेज में था तब उसको मैं अभ्यास करता था। मैं जब जनप्रतिनिधि बना, अब जब मैं एक भूमिका में हूँ, मैं अपना जिम्मेवारी निभाते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। देश में प्रजातंत्र में सत्ता और विपक्ष अपना अपना दायित्व निभाते हैं। सत्ता को आलोचना करना, सत्ता को प्रश्न उठाना, ये विपक्ष की दायित्व है, उसको हम स्वीकार भी करते हैं, उसमें से हम ठीक रहते हैं। केवल विपक्ष के नहीं, समाज की, मीडिया की, सोशल थॉट लीडर्स की, इन सब की, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल, इन सब की परामर्श हमारे लिए पथ्य है। लेकिन सबकी एक मर्यादा है, सबकी एक दायित्व भी है। मर्यादा का आरोप लगाना आपके अधिकार है, आपकी दायित्व भी कुछ है। राहुल गांधी जी ने, मैं आपको दो घटना बताऊंगा, जिस प्रकार की उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विशेष करके जो सारे हद को तोड़े। 21 को परीक्षा होगा, राहुल गांधी 3 दिन पहले जाते हैं कोटा में दहशतगर्द खड़ा करने के लिए, मेलोडी करते हैं, बच्चों के मन में भय पैदा कराते हैं।
1: Alright, news now from Tamil Nadu, where actor Trisha's birthday wish for Chief Minister Vijay has now become a political controversy. Actor Trisha had posted a photograph of Chief Minister Vijay in which he was surrounded by several birthday cakes, and he was seen smiling as he prepares to blow out the candles, drawing attention across social media, and she wished him happy birthday. Now the controversy has escalated after DMK's IT wing criticized Vijay, linking the celebrations to the recent tragedy in the state, the ammonia gas leak tragedy. The DMK questioned why Vijay didn't visit the victims or their families despite 9 reported deaths and around 60 people being hospitalized because of this incident. News now from Telangana, where a political storm erupted after a road in Hyderabad was named the Donald Trump Avenue, so named after the US president. This was a road adjoining the United States consulate, which was renamed yesterday. It was unveiled as the Donald Trump Avenue as part of celebrations marking the 250th anniversary of American independence. But the move has triggered a sharp war of words, with the BJP saying Congress leader Rahul Gandhi has repeatedly criticized Donald Trump for allegedly hurting India's interests, but the Congress government in Telangana now honoring him by naming a road after him, alleging these are double standards and double speak. Joining the attack, the BRS also targeted the Revanth Reddy government, asking why Congress chose to honor Trump if it believes he poses a threat to India's interests.
4: हम कल वहाँ मौजूद था 2250 का US consulate का celebrations, क्योंकि हैदराबाद का इंचार्ज मिनिस्टर होने के नाते वहाँ मौजूद थे। But that naming incident, I don't know, but हम भी उसमें सरकार उनकी रिक्वेस्ट मानी, क्या उसमें कोई रिलेशन रखने में कोई गलत नहीं है। इज़ ए नॉट ए क्रिमिनल, ही इज़ ए US प्रेसिडेंट है। उसके बारे में हमारा सरकार के तरफ से हम डेफिनेटली वी विल रेस्पॉन्ड।
1: थैंक यू सर।
5: राहुल गांधी के सिद्धांत और हाथी के दांत, खाने के अलग दिखाने के अलग, डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ राहुल गांधी। ऑन द वन हैंड ही विल शाउट ट्रंप ट्रंप ट्रंप ट्रंप, ट्रंप इज हर्टिंग इंडियन इंटरेस्ट, ट्रंप सरेंडर ट्रंप सरेंडर, एंड देन हिज ओन गवर्नमेंट इन तेलंगाना रीनेम्स अ रोड आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप। सो विच ऑफ इज इट is it that Rahul Gandhi is lying on foreign policy? He's taking one stand in Delhi and his government is taking other stand.

0: Chaudhary conspired to kill Ketan because he had become an obstacle in their relationship. According to police, Sia lured Ketan to Lohagarh Fort while Chetan arrived separately. The two allegedly pushed Ketan into the gorge and then attempted to pass off the death as an accident. Death passed off as selfie accident. Ketan's father, Vishal Agarwal, has made a series of explosive allegations. He claims that the suspicion first arose because Sia appeared expressionless after Ketan's death and showed no signs of grief.
1: 14/6/2026 को उन्होंने सेम लोहगढ़ किले पे केतन को मारने की सिया ने वापस से पहले प्रयास किया था. उस प्रयास में वो नाकाम हो गई. फिर उन्होंने 18 तारीख को वापस से उसे ले जाके उनके काम को अंजाम दिया. सिया गोयल के माँ बाप और भाई ये इन्वॉल्व हो सकते हैं. उसकी बुआ भी इन्वॉल्व हो सकती है. जिन लोगों को उसके सारी चीजों को पता था कि उसका अफेयर है बाहर और हमारे बच्चे का आज

0: हम भी उसमें सरकार उनकी रिक्वेस्ट मानी, क्या उसमें कोई रिलेशन रखने में कोई गलत नहीं है, इज़ ए नॉट ए क्रिमिनल, इज ए बी ए यू एस प्रेसिडेंट है, उसके बारे में हमारा सरकार की तरफ से हम डेफिनेटली वी विल रेस्पॉन्ड।
1: थैंक यू सर।
2: राहुल गांधी के सिद्धांत और हाथी के दांत, खाने के अलग दिखाने के अलग, डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ राहुल गांधी। ऑन द वन हैंड ही विल शाउट ट्रंप ट्रंप ट्रंप ट्रंप, ट्रंप इज हर्टिंग इंडियन इंटरेस्ट, ट्रंप सरेंडर ट्रंप सरेंडर, एंड देन हिज ओन गवर्नमेंट इन तेलंगाना रीनेम्स अ रोड आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप। सो विच ऑफ इज इट इज इट इज इट दैट राहुल गांधी इज लाइंग ऑन फॉरन पॉलिसी, ही इज टेकिंग वन स्टैंड इन डेली एंड हिज गवर्नमेंट इज टेकिंग अदर स्टैंड इन तेलंगाना एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले पेटी पॉलिटिक्स ऑन विदेश नीति, or is it that Revanth Reddy does not take Rahul Gandhi seriously?
3: Representing Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge on the floor of the AICC says that this so-called relationship between Modi and Trump is something that is questionable. Modi is surrendered to Trump, so therefore we should be stern and firm against Trump is what which Narendra Modi ji is not doing, is what the allegation made by the Congress party in Delhi. Contradictingly, Revanth Reddy, who is a Congress chief minister, embraces Trump and then builds a road in the name of Donald Trump. Is this not a contradiction? Is this not hypocrisy?
4: Well, number one, Rahul Gandhi ji says that Donald Trump indulges in economic blackmail, but here is a Congress chief minister who is trying to please people with Donald Trump road. But the fact is, this is only for diversion. The fact is, there are forthcoming Greater Hyderabad Municipal Corporation elections, the Cyberabad and the Malkajgiri Municipal Corporation too. And the Congress government has not laid any road, they have not built any flyover, not a RUB. So no work has been done by the Congress Chief Minister Revanth Reddy. And that is why he wants to get some media attention by naming Donald Trump road.

0: Welcome, you're watching Nationwide at 6 with me, Raisha Sehgal, and we're tracking the Kolkata warehouse horror. Let's tell you more about that. A tragedy in Kolkata where three labourers have been killed after a warehouse roof collapse. 21 rescued so far, 18 injured and under treatment. 12 to 15 people are believed to be trapped and they have been connected with the NDRF. Well, apart from that, four columns of East Command, Indian Army, have also been swiftly launched for the search and rescue operation in central Kolkata's Taratala neighbourhood. The West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari, he reached the spot and he said that the state government stands firmly with them in this hour of unimaginable grief. And he further said that we will extend all possible support to them. Rescue and relief operations are currently being carried out on a war footing. The Army, NDRF, SDRF, Kolkata Police and KMC, they are jointly conducting the rescue operations to ensure that every trapped worker is brought to safety as quickly as possible. Take a listen to all the reactions coming in.
1: 12:07 बजे दोपहर हादसा हुआ, 12:45 एक से ही काम शुरू कर दिया। कलकत्ता पुलिस, सिविल डिफेंस और केएमसी के लोग 1:30-2 बजे से ही वहाँ जॉइंट सीपी, केएमसी कमिश्नर, सीपी, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड के लोग मॉनिटरिंग करना चालू कर दिया। मैं और सीएसबी 2 बजे से चालू कर दिया मॉनिटरिंग। 2:30 बजे आर्मी का साथ बात हो गया, 3:20 में आर्मी एनडीआरएफ जाकर संभाल लिया, पूरा जॉइंट किया, काम हुआ है, काम अभी भी चल रहा है। अभी भी तो पूरा फाइनल कंक्लूजन आना ठीक नहीं होगा। अब तक 21 रिकवर हुआ, उनमें 3 आउट ऑफ 21, 3 डेथ, 18 अलाइव, 9 आर ऑनगोइंग अंडर ट्रीटमेंट इन एसएसकेएम हॉस्पिटल।
2: सब इल्लीगल है, टीएमसी का सालों से ये सब इल्लीगल कंस्ट्रक्शन लगा के रखे, बाघ उसका तो हिसाब बाद में होगा। अभी है कि

0: इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें अंकित नाम का बंदा है, अंकित जो कि NIA में साइबर एक्सपर्ट है, ये एडहॉक पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है जो, और अंकित नाम का बंदा है। तो दूसरा हमारे पास, इसको हमने दोनों को हिरासत में लिया है इसमें।
1: अकाल तख्त साहिब ने अपने माध्यम से इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कराने के लिए फोरेंसिक की दो लेबोरेटरी से जांच कराई, जिसकी जांच की रिपोर्ट 27 मई और 13 जून को आने के बाद ये कंक्लूड कर लिया गया, स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो भी असली है, कोई एआई जनरेटेड नहीं है, और इस वीडियो में जो दिख रहे हैं भगवंत मान, जो उन्होंने पाप किया है वो ना माफ करने योग है। इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया।
2: ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੱਕ ਦਿੱਤਾ।
3: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
4: ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਟੈਂਪਰਰੀ DGP ਆਪਣੇ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, SP ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਸ਼ਨਦੀਪ, ਉਨਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ। FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ ਗੁੜਗਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਧਨਵਾਦੀ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਨਕੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ।
5: जब श्री अकाल तख्त साहब ने उनको बुलाया था और उनके सामने वो अभद्रता वाली, अश्लीलता वाली, अनैतिक कृत्य करने वाली, बेदबी करने वाली वीडियो रखी थी, तो उन्होंने उसको डिनायल करते हुए कहा था कि ये वीडियो गलत है, AI से निर्मित है, टेम्पर्ड है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उन्हीं की, भगवंत मान की रिक्वेस्ट पर ही श्री अकाल तख्त साहब ने दो इंडिपेंडेंट एजेंसियों से उसकी जांच कराई और जांच में ये स्पष्ट हो गया कि वीडियो ना तो टेम्पर्ड है ना AI से निर्मित है। और उसी के आधार पर श्री अकाल तख्त साहब ने भगवंत मान को गुरु दोखी, पंथ विरोधी करार दिया। उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री के पद पर रहे।
6: वीडियो की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। अब उसके बाद बौखलाहट में भाजपा हाथ पैर मार रही है। अगर फर्जी रिपोर्ट बनानी होती तो पंजाब की पुलिस पंजाब में बनवा लेती, उसको गुड़गांव आने की क्या जरूरत थी।
7: Or have you heard all the reactions coming in from all the ministers regarding the Bhagwant Mann sacrilege controversy? Let's now tell you more about the video controversy and what exactly happened. First up, the chief minister allegedly disrespected Sikh religious imagery. Apart from that, another accusation is that the chief minister denied allegations and he rather claimed that the video is manipulated, it is politically motivated, wherein he is disrespecting the Sikh religious images. Now, Akal Takht, which is the highest group in Sikh, they have now taken a strong position against the sitting chief minister of Punjab, Bhagwant Mann. Punjab AAP claimed that independent forensic test proved that video which is circulating is fake. But let's now tell you about how the

0: and heavy rain, causing damage to the vehicle. Meanwhile, in Vikhroli West, a retaining wall adjacent to a residential building collapsed. The India Weather Department has warned of continued rain, thunderstorms and gusty winds across the city, with a weather alert remaining in place as well. In fact, a man fell into an open manhole right in front of the mayor's office there. Take a look.
1: सुबह से ही मुंबई में बरसात की शुरुआत हो चुकी है. फिलहाल मैं मुंबई के दादर ईस्ट परिसर में उपस्थित हूँ. आप मेरे पीछे देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार बरसात जो है वो मुंबई में हो रही है, उसको लेकर ये जो झाड़ है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है. आप देख सकते हैं कि जड़ से ये झाड़ दुर्घटना होने की वजह से, जिसमें जो ड्राइवर थे उनकी भी जान जो है वो धोखे में आ चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह के वक्त वो यहाँ पे आराम कर रहे थे तब जो है वो झाड़ यहाँ पे गिरा. जिनका गाड़ी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह दुर्घटना कब हुई और वो उस दौरान कहाँ थे. सर मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये गाड़ी डैमेज हो चुकी है, आप उस दौरान कहाँ थे और जब यह डैमेज हुआ उस दौरान आप कहाँ थे?
2: मैं गाड़ी के अंदर ही था, गाड़ी के अंदर ही था. और वो गाड़ी का झाड़ जब गिर गया ना, मेरे को थोड़ा नींद लग गया था. जब झाड़ गिर गया था तो लोग मेरे को गिलास तोड़ के बाहर निकाला.
3: The most awaited monsoon season has officially and finally begun in Mumbai. But Mumbai, the streets of Mumbai are full of water in its first rain only. Right now, I am standing at Sion Gandhi Market area. This is an hotspot area. Even if it rains for a little while, this area gets flooded with water. And right now, the situation is same because it is raining in Mumbai since morning. Even yesterday, it was raining. But today, since morning, it's raining heavily. And this very hotspot area of Mumbai, that is the Sion Gandhi Market area, is flooded with water. You can see right in front of me a BST bus is shut down. In front of the BST bus, a tempo truck is also shut down. Also, the traffic is jammed because of this waterlogging. The BMC had stated that this year Mumbai will not face waterlogging because the nalas have been cleared up, but we can see the reality check over here.
4: यहाँ पे हिंदे माता में खड़ी हूँ. यहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे पाँच है, यहाँ पे छः पंप फुल फ्लेज में यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं. पूरा रोड का जितना भी एक्सेस वाटर यहाँ पे आ रहा है, ये पूरा आप देख रहे हैं यहाँ से जाने का काम चालू है. लेकिन इसके साथ में जो कचरा आ रहा है जाली के ऊपर, उसको भी निकालने का काम पूरा यहाँ पर चालू है. आपने यहाँ पर देखा रेलवे की जो कूटर है, यहाँ से भी निकाल के कचरा लेके जाने का काम चालू है. पूरा मुंबई महानगर पालिका वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और जो जाली है उसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं.
5: इट इज़ कंटिन्यूसली रेनिंग सिंस ओवरनाइट एंड द सिचुएशन इज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मुंबईकर्स. वी आर प्रेजेंट हियर एट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इन द विले पार्ले एरिया राइट नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट. एंड यू कैन सी द सिचुएशन ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, one of the important highway which is connecting suburban Mumbai to south Mumbai, and you can already see the congestion, the traffic congestion on the highway clearly. And this is an important route which connects suburban Mumbai to south Mumbai, and Mumbaikars are out on the road traveling towards their offices, and this route becomes very prominent and important as per the updated warning by IMD that orange alert is being issued for the next 3 hours, and more importantly, precaution needs to be taken by the Mumbaikar is an advisory issued. More importantly, the low-lying areas, eastern and western suburbs and other pockets have already received, are already waterlogged at this given point of time, and you can clearly see the traffic congestion.
0: Meanwhile, a political showdown has started on waterlogging in Maharashtra after rainfall. Shiv Sena UBT MLA Aditya Thackeray has now launched a sharp attack on the Maharashtra government, alleging a complete lack of monsoon preparedness and accusing the BJP-led administration of neglecting urban infrastructure. Thackeray said the focus should be on governance and not politics. Joining the criticism, NCP SP also questioned the preparedness of the civic administration, saying that the BNC appeared completely unready to handle the situation that everyone is facing in Mumbai.
6: पंपिंग पंप के यहाँ पे ही खड़ी हूँ, घर पे बैठ के नहीं होता है. मैं वापिस एक बार बोल रही हूँ, हमारी किशोरी ताई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस घर पे ले रही है. आप लोक प्रतिनिधि हो,

0: आप लोगों को मुंबई करने चुन के यहाँ पे भेजा है। घर में बैठ के काम नहीं होता है, बारिश में भीगना पड़ता है, आना पड़ता है, रोड में आना पड़ता है। हमारी मीडिया के प्रतिनिधि भी आज रोड पे खड़े, इस तरह से काम होता है। मुंबई करने अभी तक का मेयर को इस तरह से देखा नहीं है, नहीं मीडिया ने देखा है। यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, पूरे 4 मंथ्स मैं सिर्फ लोगों को बारिश में रोड पे ही दिखने वाली हूँ। मेरे जैसा काम करने की ताकत रखो, घर पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मुंबई का पूरा आढ़ावा मत लिया करो।
1: Yeah, I heard the mayor of Mumbai saying that, you know, you shouldn't do politics regarding this monsoon issue that is going on, you know, Mumbai submerged, flooding around everywhere. The question is not politics, it's about governance. Had the BMC worked on it before the monsoons, we wouldn't have been in this situation right now. You know, statements like, you know, the opposition shouldn't be sitting in AC rooms and making statements, come out in the open. We are all out in the open. We also trapped. We are facing the same situation like any common Mumbaikar. We are also Mumbaikars. But the point here is the BMC sat and did nothing before the monsoons. The incumbent government did nothing in the, you know, for the preparation of the monsoons. And now they are blaming everybody else. What were they doing when they know that monsoons are going to arrive?
2: जो आज मेयर है मुंबई की रितु तावड़े, उनको ढाका ज्यादा दिखता है, बांग्लादेश ज्यादा दिखता है, मुंबई और महाराष्ट्र दिखता नहीं है। जो आज मेयर है मुंबई की रितु तावड़े, उनको ढाका ज्यादा दिखता है, बांग्लादेश ज्यादा दिखता है, मुंबई और महाराष्ट्र दिखता नहीं है।
3: इन लोग ने सालों साल जो की हुई गंदगी है जी। उसको साफ करने को वक्त लगेगा थोड़ा। अभी आए हम लोग महापौर, ये सालों साल की गंदगी है, थोड़ा साफ करने को वक्त दे दीजिए, इनसे अच्छा काम करके बताएंगे।
4: In other news, will there be uniform civil code in Maharashtra soon or not? The debate over the UCC is turning into a major political flashpoint in Maharashtra. Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde has strongly backed the idea of a uniform civil code, saying that it was supported by Balasaheb Thackeray. Shinde said that there is a need for UCC in the country, adding that everyone should get equal justice. UBT has now slammed Mahayuti and said that the matter should be discussed on merit. He called for uniformity across all laws, especially in accountability. He added that governance too must be free of bias and ensure equal application of laws.
5: मैंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है समान नागरिक कानून, ये हमारे बालासाहेब ठाकरे जी की पहले से भूमिका रही है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सकारात्मक है और शिवसेना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सकारात्मक भूमिका हमारी है। देश में समान नागरिक कानून होने की आवश्यकता है, सभी को समान न्याय और मिलना चाहिए, ये भूमिका शिवसेना की है।
6: देखिए जो जो हमारे देश में संविधान मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, दो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान मानता है, जिस संविधान में यूसीसी का मेंशन है, तो फिर अगर आप संविधान मानते तो यूसीसी का विरोध कैसे कर सकते हो? फिर तो आप शरिया कानून आपको चाहिए, तो वह हमारे देश में लागू नहीं है। तो दो दो देश में शरिया कानून है, वहां पे निकल जाना चाहिए।
2: बात यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे पहले तो मेरिट पे हो, उसी पे चर्चा करेंगे हम। दूसरी बात सबसे अहम यही है कि यूनिफॉर्मिटी सारे कानून में होना चाहिए। फिर अगर ईडीआईटी सीबीआई किसी के पीछे जा रही है तो कितने सत्ताधारी पक्ष के लोगों पे गई है और कितने विपक्ष पे गई है, इस पे भी बात हो, इसमें भी यूनिफॉर्मिटी आए। आप कोई भी भ्रष्टाचारी लेते हो, सीएम बनाते हो, डीसीएम बनाते हो, उसमें यूनिफॉर्मिटी है। और तीसरी बात अगर डेवलपमेंट फंड्स की बात हो, उसमें भी यूनिफॉर्मिटी है।
4: With that, we slip into a very short break. Come right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
3: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
2: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: हमारा रिक्वेस्ट होगा ये डिसीजन रिकॉन्सिडर कीजिए।
1: हम लोगों का जो एंसेस्टर लोग यहाँ 5000 साल पहले से रह रहे हैं, तो ये साइंस से जो हम खाते हैं ये हमारा माने चला आ रहा है। तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन पीपल है, तो मिड डे मील में जहाँ प्रोटीन का सवाल है, अंडा एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, मसूर का दाल एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, तो ये हटाना ठीक नहीं है। ये इस्कॉन को देने से जो होगा तो ये सिर्फ वेजिटेरियन फूड दिया जाएगा, तो बंगाल के पैमाने में ये ठीक बात नहीं है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
2: Time now for a very quick break. On the other side, we talk about a story that's on everyone's lips across the country. A young couple who were headed for a wedding, but that whole love story ended in murder. The question all of India is asking is there something fundamentally broken in our society? Stay tuned.

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
3: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
2: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: made their final preparations. On the day of the murder, Sia and Chetan reportedly met at a cafe, where they allegedly discussed the route and identified the exact spot from which Ketan would be pushed into the gorge.
1: We are at that very ground zero on the treacherous spot where Sia Goyal, the accused who was said to get married to the deceased 26-year-old Ketan Agrawal, she pushed him from this very spot, and this is where Ketan was pushed down to his death. And not just Sia, but also we know that her boyfriend Chetan was too present at the spot wherein he was the one who too had planned the entire killing.
0: A breakthrough came when investigators examined CCTV footage from Lohagarh Fort. A man wearing a monkey cap, hoodie and mask despite the scorching heat caught their attention. The footage showed him allegedly communicating with Sia through hand signals, giving the investigation a new direction. Initially, the case was treated as an accidental death, but Ketan's family, especially his sister, remained unconvinced. 4 days after his death, Sia visited the family to offer condolences. During the interaction, Ketan's sister questioned her about the sequence of events and reportedly noticed inconsistencies. The family's suspicions prompted police to reopen the probe. Meanwhile, accused Chetan Chaudhary's uncle has rejected the allegations.
2: हम बोल देना चेतन का उसमें चेतन इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं है चेतन एकदम नहीं
3: तो उसको फंसाया जा रहा है क्या चेतन को इसमें फंसाया जा रहा है
0: With the accused now in police custody, investigators are piecing together what they describe as a chilling conspiracy behind Ketan Agarwal's death. With Sujata Dwivedi and Akshay Khutkelkar, Bureau Report, NDTV.
4: And I quickly want to show you where this crime took place. It's the famous Lohagarh Fort just outside the city of Pune. Absolutely stunning place with sheer ramparts that have these long drops. And it was off one of these walls where NDTV filmed this entire fort that Ketan was pushed to his death. Just imagine these long cliffs where Ketan fell to his death. He was pushed not once, he was pushed twice, and he still went back only to meet his end. So the question I ask is, why has this story shocked us so much? And I have a few thoughts for you tonight. Sia apparently chose murder over simply saying no to marriage with Ketan, even though there were so many videos of them looking like they were looking forward to getting married. There is an unsettling implication that there was pressure from Sia's family. We don't know that just yet. All avenues were less desirable to Sia than planned murder of the man her family wanted her to get married to. Everyday quality of Sia-Ketan relationship, the situation is just familiar to so many of us, and that's the reason why it is especially unsettling and disturbing. Allegations that Sia's family could be involved in the conspiracy are especially unnerving. So tonight, here are the unanswered questions in the death of Ketan Agarwal. On the 18th of June, why didn't Sia call for immediate help after her fiancé Ketan fell, after she allegedly pushed him? Why did Ketan continue visiting the fort despite being pushed on the 14th of June? At that time, Sia had said she had seen a snake and she had pushed Ketan in order to protect him. Seems like a bit of a rich story, but he believed it and he went back to the fort when she called him there. Did either Sia or her boyfriend Chetan try to destroy any evidence other than the Lohagarh fort? Were there other attempts to isolate Ketan in order to commit this kind of a horrible crime? Were Sia Goyal's parents aware that she did not want to marry Ketan? These questions do not have answers. But I did have a small chat with Vishal Agarwal, the father of Ketan, the fiancé who was pushed by Sia. This is his first interview on television so far. And joining me live for the first time on television since the tragic death of his son, Ketan, is Ketan's father, Vishal Agarwal. Vishal ji, pehle aapke family tragedy ko lekar mujhe bahut dukh hai aur humse baat karne ke liye dhanyawad. Mera pehla sawal, Vishal ji, kyunki abhi tak coverage mein bahut claims, counter-claims saamne aaye hain, lekin main aapse poochna chahta hoon ki aapke mutabik Ketan ke saath लोहागढ़ फोर्ट में क्या हुआ था? क्या हुआ था विशाल जी?
5: जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे और ऊपर वो घूमने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई, उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में।
6: विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को, क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
5: नहीं, उस टाइम शक ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का देके, लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हग कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो।
6: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था, उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
5: जी, क्योंकि जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर जो भी वहाँ से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की संजना सिया से सवाल कर रही थी, तो सिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनरल सवाल थे कि कैसे हुआ, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, और वो तो एज पे जाता नहीं, इतने एज पे कैसा चला गया, तो उसने एक भी सवाल का जवाब दिया नहीं।
6: ये दोनों परिवार जो हैं विशाल जी, आपने कल बताया था मीडिया पर कि आप एक दूसरे को 40 साल से जानते हैं, क्या कभी आपको कुछ ऐसे शक हुआ कि सिया खुश नहीं है इस अरेंजमेंट से, इस शादी का प्लान से खुश नहीं है, क्या ऐसा कुछ भी सिग्नल था आपको?
5: कभी भी नहीं था। हर दूसरे दिन ये लोग बाहर किसी न किसी डिनर पे चले जाते थे, स्नैक्स खाने के लिए जाते थे, वो फोन कर कर के बात करती थी, संजना से भी करती थी, मेरे मिसेस से भी करती थी, रोज एक दो फोन उसके आते ही थे।
6: और उसने कभी भी कुछ भी सिग्नल, कोई भी शक नहीं था आप में कि उसको नहीं करना था शादी और कोई और है उसके ज़िंदगी में, जो चेतन जो भी अरेस्ट हुआ है उसके साथ, जो सीसीटीवी में सामने आया है, आपको उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था इसके पहले?
5: कभी नहीं पता चला सर, बिल्कुल पता नहीं था सर, पता भी नहीं चला बिल्कुल भी।
6: केतन क्या बोलता था इस रिलेशनशिप के बारे में विशाल जी, क्या उसको कुछ भी शक था कि सिया खुश नहीं है और ये शादी नहीं चाहती थी?
5: उसने कभी बताया नहीं ना, उसको पता ही नहीं था।
6: आपके मुताबिक
5: ऐसा हुआ ही नहीं ना सर, उसने कभी बताया ही नहीं उसको, ना उसको पता था ये सब चीजें। हाँ, कभी कभी उसके फोन बहुत वेटिंग आते थे, तो वो मेरे को बोलता था कि पापा उसके फोन बहुत वेटिंग आते हैं।
6: वेटिंग आती थी मतलब?
5: जब केतन सिया को कॉल करता था तो उसका फोन बिजी आता था, हमेशा वेटिंग पे रहता था।
6: तो उसको शक हुआ कि कोई और है सिया की लाइफ में, ऐसा कुछ कहा केतन ने आपसे?
5: हाँ, ऐसा नहीं कहा, नहीं, सिर्फ वो बोलता था बहुत वेटिंग आता है, तो किससे बात करती है इतना, उसने उसको पूछा भी था, तो बोले दोस्त है, दोस्तों के फोन आते हैं ना, तो उनसे भी बात करना पड़ता है।
6: आपके मुताबिक सिया ऐसे क्यों
5: किया? आजकल तो सब बच्चों के दोस्त होते ही है ना, वो
6: नहीं,
5: तो
6: नहीं, बिल्कुल
5: से बात करते।
6: बिल्कुल विशाल जी, मेरा सवाल ये है कि आपके मुताबिक, आप केतन के पिताजी
5: सर, मुझे
6: आपको ये सीधा सवाल मैं कर रहा हूँ कि आपके दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, आपके हिसाब से ऐसे क्यों किया होगा सिया ने?
5: सर ये तो शॉकिंग है, समझ में ही नहीं आ रही ना बात। देखो, बात इतनी छोटी सी थी, अगर उसका कहीं पे अफेयर है किसी के साथ, वो किसी को भी बता सकती थी, चलो बताना भी नहीं था, तो उस लड़के के मोबाइल से एक व्हाट्सएप उन दोनों की फोटो किसी को

0: भी कर देती थी तो हमारे साइड से एक मिनट में रिश्ता कैंसिल हो जाता था। कोई ऐसी जबरदस्ती थोड़ी थी कि उसको शादी करनी ही है।
1: आप उस परिवार को जानते हो विशाल जी, क्या क्या सिया पर कुछ प्रेशर था, ऐसा कुछ था कि उसको एक नो वे आउट टाइप का कंडीशन समझा?
0: अब तो ऐसे ही लग रहा है ना सर कि उस सिया पे उसके मम्मी डैडी और उसके बुआ का प्रेशर होगा, क्योंकि उनके घर में उसके बुआ का रेनो नरेंद्र मित्तल इनका बहुत चलता है और उसके हिसाब से सब कुछ चलता है, और ये रिश्ता भी उन्होंने ही कराया था रेनो नरेंद्र मित्तल।
1: क्योंकि ऐसा लगता है कि सिया शादी से इनकार कर सकती थी विशाल जी, एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लगता है कि कोई भी नो बोल सकता है। जैसे आपने बताया, एक फ़ोटो सामने ला सकता है कि उनका अफेयर है, उनका बॉयफ्रेंड है, और कुछ थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो सकता है फैमिली के साथ, और उसके बाद लाइफ कैरीज ऑन। ऐसे क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या था उस परिवार में कि वो ऐसे स्थिति में आ गए?
0: सर पता नहीं, क्या तो उनका कुछ प्लानिंग होगा जो अभी तक हमें पता नहीं चला, शायद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकाल पाए। अभी तक तो हमें पता चला नहीं कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया।
1: आप कब तक उस परिवार के संपर्क में थे इस हादसे के बाद? क्या आपने उनसे बात की, प्रयास किया बात करने के लिए उस परिवार से?
0: जी नहीं, हादसे के बाद सेकेंड डे फूल उठाने के कार्यक्रम पे वो लोग आए थे दोपहर में हमारे घर पे, बस उतने ही, तभी तक हम उनके संपर्क में थे, उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ।
1: आपकी बेटी विशाल जी संजना, जो जिसको पहले से शक थी कि कुछ गड़बड़ है इसमें, वो अब क्या कहती हैं, आपसे क्या कहती हैं अब?
0: नहीं, पहले से मतलब हादसा हुआ उस दिन से शक था, उससे पहले नहीं था। हादसा हुआ उस दिन से क्योंकि केतन की वैसी आदतें नहीं थे ना कि कहीं वो क्लिफ पे जाके रुक जाए, एज पे जाके रुक जाए, ये उसकी आदतों में नहीं था।
1: जब किसी का पासपोर्ट गुम हो गया था, वो बाली जाने वाले थे एक प्री वेडिंग शूट के लिए, तब भी कोई शक नहीं हुआ सर कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें?
0: सर गड़बड़ का तो शक हुआ, लेकिन इस बात का नहीं हुआ ना, क्योंकि केतन का ही पासपोर्ट सिया ने निकाल के फाड़ के फेंक दिया। वो पता अब चल रहा है, तब तो ऐसा हो गया था ना कि लॉस्ट हो गया, तो लॉस्ट को शक क्या करेंगे? लॉस्ट को तो ढूंढा बहुत सब जगह, घूम फूर के पुलिस में कंप्लेंट भी की, लेकिन उसमें ऐसा शक आने जैसा, इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ऐसा शक नहीं कैसे आएगा ना सर।
1: इस इंसिडेंट के पहले आपका लास्ट बातचीत केतन से कब हुआ और क्या था सर? बिल्कुल नॉर्मल था, उसके मन में कुछ था, क्योंकि उसके बिल्कुल कुछ दिन पहले वो गए थे इसी जगह पर जहाँ से वे ऑलमोस्ट गिरे थे।
0: को शाम को 11 बजे तक वो मेरे साथ था, बात करते हुए, तो नॉर्मल था, ऐसा कोई उसमें डिस्कशन का या ऐसा।
1: विशाल जी, सिया और चेतन अब अरेस्ट हो चुके हैं, उनको क्या सजा होनी चाहिए आपकी तरफ से?
0: सर मेरा तो अभी भी, मेरा न्याय पे, अपने भारत के न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, और मैंने अभी भी उनसे रिक्वेस्ट की है, और मैं बाकियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पूरे पहले जड़ में जाए, धागे दोरे निकाले कि इसमें और किसी का हाथ है क्या, क्या है क्या नहीं, अगर कोई इसमें और इन्वॉल्व है तो उसको भी उसके अंदर गुनहगार बना के, और इनको जल्द से जल्द, मैं चाहूंगा कि इनको फांसी की सज़ा हो, क्योंकि आज मेरा 26 साल का बेटा उन्होंने

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
3: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
2: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: देश का टायर जेके टायर
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें
2: जिंदल स्टेनलेस इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील

0: सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को, क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
1: नहीं, उस टाइम शक कैसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का देके, लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हग कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो।
0: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था, उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
1: जी, क्योंकि जब जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर जो भी वहाँ से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की सिया से सवाल कर रही थी, तो सिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनरल सवाल थे कि कैसे हुआ, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, और वो तो एज पे जाता नहीं, इतने एज पे कैसा चला गया, तो उसने एक भी सवाल का जवाब दिया नहीं।
0: ये दोनों परिवार जो हैं विशाल जी, आपने कल बताया था मीडिया पर कि आप एक दूसरे को 40 साल से जानते हैं, क्या कभी आपको कुछ ऐसे शक हुआ कि सिया खुश नहीं है इस अरेंजमेंट से, इस शादी का प्लान से खुश नहीं है, क्या ऐसा कुछ भी सिग्नल था आपको?
1: कभी था, हर दूसरे दिन ये लोग बाहर किसी न किसी पे चले जाते थे, स्नैक्स खाने के लिए जाते थे, वो फोन कर कर के बात करती थी, संजना से भी करती थी, मेरे मिसेस से भी करती थी, रोज एक दो फोन उसके आते ही थे।
0: अभी तक जो प्रोब हुआ है और हो रही है, उससे आप क्या संतुष्ट हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, या कुछ और होना चाहिए?
1: सर, जब तक उनको सजा नहीं होती तो मैं सेटिस्फाइड या संतोष हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका पूरा सुख चैन तो छीन लिया मेरे बच्चे को मार के, एक ही लड़का था मेरे को, आज मेरा बुढ़ापे का सहारा उन्होंने छीन लिया, तो मैं उस बात से संतुष्ट तो हो नहीं सकता। लेकिन जो भी आज सरकार या न्याय व्यवस्था काम कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है।
2: Well, clearly a love story in Pune ending in a tragic murder. It has now come to fore that the accused Sia readied two plans to kill her fiancé Ketan. The first one failed, the second one killed him. And there was a plan C which was kept ready. Ketan's family alleges that Sia had formulated plan C if the Lohagarh plot failed. The family claims the third plot was that Ketan was to be killed during a family trip to Mahabaleshwar.
3: What was initially believed to be a tragic accident is now being investigated as an alleged murder. Police say Ketan Agarwal fell into a gorge at Lohagarh Fort on June 18. But his family claims the deadly fall was no accident. A day before her birthday, Sia allegedly insisted on a pre-birthday outing to Lohagarh Fort. Her alleged lover, Chetan Chaudhary, was reportedly just 20 to 30 feet behind the couple at the time of the incident. But the family now claims this wasn't the first attempt to kill Ketan. Ketan's father Vishal Agarwal has made a stunning allegation that Sia first tried to murder his son 4 days earlier.
4: 14/6/2026 को उन्होंने सेम लोहगढ़ किले पे केतन को मारने की सिया ने वापस से पहले प्रयास किया था, उस प्रयास में वो नाकाम हो गई, फिर उन्होंने 18 तारीख को वापस से उसे ले जाके उनके काम को अंजाम दिया।
3: On June 14, when Sia allegedly pushed Ketan towards the edge, Ketan survived after managing to grab hold of a bush. And then came what the family calls a cover story. The father alleges Sia started screaming that she saw snake.
4: Return आल्यानंतर त्यांनी तिसऱ्या चौथ्या दिवशी परत वापस त्याच्या संगत राडा घातला,
5: भांडण केली की आपल्या

0: क्योंकि ऐसा लगता है कि सिया शादी से इनकार कर सकती थी। विशाल जी, एक नॉर्मल नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लगता है कि कोई भी नो बोल सकता है, जैसे आपने बताया एक फ़ोटो सामने ला सकता है कि उनका अफेयर है, उनका बॉयफ्रेंड है, और कुछ थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो सकता है फैमिली के साथ, और उसके बाद लाइफ कैरीज ऑन। ऐसे क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या था उस परिवार में कि वो ऐसे स्थिति में आ गए?
1: सर पता नहीं, क्या तो उनका कुछ प्लानिंग होगा जो अभी तक हमें पता नहीं चला। शायद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकाल पाए, अभी तक तो हमें पता चला नहीं कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया।
0: आप कब तक उस परिवार के संपर्क में थे इस हादसे के बाद? क्या आपने उनसे बात की, प्रयास किया बात करने के लिए उस परिवार से?
1: जी नहीं, हादसे के बाद सेकेंड डे फूल उठाने के कार्यक्रम पे वो लोग आए थे दोपहर में हमारे घर पे, बस उतने ही, तभी तक हम उनके संपर्क में थे, उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ।
0: आपकी बेटी विशाल जी, संजना, जो जिसको पहले से शक थी कि कुछ कुछ गड़बड़ है इसमें, वो अब क्या कहती हैं आपसे, क्या कहती हैं अब?
1: पहले से मतलब हादसा हुआ उस दिन से शक था, उससे पहले नहीं था। हादसा हुआ उस दिन से क्योंकि केतन की वैसी आदतें नहीं थे ना कि कहीं वो क्लिफ पे जाके रुक जाए, एज पे जाके रुक जाए, ये उसकी आदतों में नहीं था।
0: जब उन किसी का पासपोर्ट गुम हो गया था, वो बाली जाने वाले थे एक प्री वेडिंग शूट के लिए, तब भी कोई शक नहीं हुआ सर कि कुछ कुछ तो गड़बड़ है इसमें?
1: सर गड़बड़ का तो शक हुआ, लेकिन इस बात का नहीं हुआ ना, क्योंकि केतन का ही पासपोर्ट सिया ने निकाल के फाड़ के फेंक दिया। वो पता अब चल रहा है, तब तो ऐसा हो गया था ना कि लॉस्ट हो गया, तो लॉस्ट को शक क्या करेंगे? लॉस्ट को तो ढूंढा बहुत सब जगह, घूम फूर के पुलिस में कंप्लेंट भी की, लेकिन उसमें ऐसा शक आने जैसा, इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ऐसा शक नहीं, कैसे आएगा ना सर?
0: इस इंसिडेंट के पहले आपका लास्ट बातचीत केतन से कब हुआ और क्या था सर? बिल्कुल नॉर्मल था, उसके मन में कुछ था, क्योंकि उसके बिल्कुल कुछ दिन पहले वो गए थे इसी जगह पर जहाँ से वे ऑलमोस्ट गिरे थे।
1: 17th को शाम को 11 बजे तक वो मेरे साथ था। बात करते हुए तो नॉर्मल था, ऐसा कोई उसमें डिस्कशन का या ऐसा।
0: विशाल जी, सिया और चेतन अब अरेस्ट हो चुके हैं, उनको क्या सजा होनी चाहिए आपकी तरफ से?
1: सर मेरा तो अभी भी, मेरा न्याय पे, अपने भारत के न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, और मैंने अभी भी उनसे रिक्वेस्ट की है, और मैं बाकियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पूरे पहले जड़ में जाए, धागे दोरे निकाले कि इसमें और किसी का हाथ है क्या, क्या है क्या नहीं। अगर कोई इसमें और इन्वॉल्व्ड है तो उसको भी उसके अंदर गुनहगार बना के, और इनको जल्द से जल्द, मैं चाहूँगा कि इनको फांसी की सज़ा हो, क्योंकि आज मेरा 26 साल का बेटा, उन्होंने इतने छोटी सी बात के लिए उसकी हत्या कर दी। अगर शादी नहीं करनी थी तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सर, एक सेकेंड में कैंसिल हो सकती है, इसमें कोई ऐसा ज़बरदस्ती वाली बात नहीं थी, लेकिन इनकी थिंकिंग इतनी ये थी कि उन्होंने सीधा मेरा बच्चा मार दिया।
0: विशाल जी, क्या आपको लगता है कि सिया के परिवार सिया की जो रिलेशनशिप थी चेतन के साथ, उसके बारे में पता था?
1: होगा ना सर, कैसे कैसे नहीं होगा, आप मुझे बताइए। आज हर एक के घर में बच्चे होते हैं, अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, किस माँ बाप को नहीं पता होता? ठीक है 100% नहीं होता है तो 30

0: किसी का भाई किसी का बेटा, आप हर कोई हर इंडियन का भाई हर इंडियन का बेटा है, कोई हम अलग नहीं है। अगर उसके साथ ऐसा हुआ है विदाउट एनी सिक्योरिटी वो नहीं बचा, किस वजह से? रेलवे सेफ्टी कहाँ है? अंदर वाली रात के 10:30 बजे की ट्रेन, 10:10 की ट्रेन, वो लोग कहाँ है?
1: के लोग पब्लिक कहाँ है?
0: इतनी,
1: तो
0: इतनी बड़ी चक्कू थी, इतनी बड़ी चक्कू
1: सपोर्ट करनी चाहिए थी ना पब्लिक ने।
2: सरकार से क्या मांग करेंगे?
0: मुझे न्याय चाहिए मेरे भाई।
3: Slipping into a very short break, don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: Sia or her boyfriend Chetan try to destroy any evidence? Other than the Lohagarh fort, were there other attempts to isolate Chetan in order to commit this kind of a horrible crime? Were Sia Goyal's parents aware that she did not want to marry Chetan? These questions do not have answers. But I did have a small chat with Vishal Agarwal, the father of Chetan, the fiancé who was pushed by Sia. This is his first interview on television so far. And joining me live for the first time on television since the tragic death of his son, Chetan, is Ketan's father, Vishal Agarwal. Vishal ji, pehle aapke family tragedy ko lekar mujhe bahut dukh hai aur humse baat karne ke liye dhanyawad. Mera pehla sawal, Vishal ji, kyunki abhi tak coverage mein bahut claims, counter claims samne aaye hain, lekin main aapse puchna chahta hu ki aapke mutabik Chetan ke saath Lohagarh fort mein kya hua tha? Kya hua tha, Vishal ji?
1: जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे और ऊपर वो घूमने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई, उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में.
0: विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को. क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
1: नहीं, उस टाइम शक ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया, सांप आया धक्का देके. लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हग कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो.
0: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी, ने सस्पिशन पहले जताया था? उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
1: जी, क्योंकि जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर जो भी वहाँ से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की संजना सिया से सवाल कर रही थी, तो सिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया. जनरल सवाल थे कि कैसे हुआ, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, और वो तो एज पे जाता नहीं, इतने एज पे कैसा चला गया, तो उसने एक भी सवाल का जवाब दिया नहीं.
0: ये दोनों परिवार जो हैं विशाल जी, आपने कल बताया था मीडिया पर कि आप एक दूसरे को 40 साल से जानते हैं, क्या कभी आपको कुछ ऐसे शक हुआ कि सिया खुश नहीं है इस अरेंजमेंट से, इस शादी का प्लान से खुश नहीं है? क्या ऐसा कुछ भी सिग्नल था आपको?
1: कभी भी नहीं था. हर दूसरे दिन ये लोग बाहर किसी न किसी डिनर पे चले जाते थे, स्नैक्स खाने के लिए जाते थे. वो फोन कर कर के कि बात करती थी, संजना से भी करती थी, मेरे मिसेस से भी करती थी. रोज एक दो फोन उसके आते ही थे.
0: और उसने कभी भी कुछ भी सिग्नल, कोई भी शक नहीं था आप में कि उसको नहीं करना था शादी और कोई और है उसके जिंदगी में, जो चेतन जो भी अरेस्ट हुआ है उसके साथ, जो सीसीटीवी में सामने आया है, आपको उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था इसके पहले?
1: कभी नहीं पता चला सर, बिल्कुल पता नहीं था सर, पता भी नहीं चला बिल्कुल भी.
0: केतन क्या बोलता था इस रिलेशनशिप के बारे में विशाल जी? क्या उसको कुछ भी शक था कि सिया खुश नहीं है और ये शादी नहीं चाहती
1: थी? उसने कभी बताया नहीं ना, उसको पता ही नहीं था.
0: आपके मुताबिक
1: ऐसा हुआ ही नहीं ना सर, उसने कभी बताया ही नहीं उसको, ना उसको पता था ये सब चीज़ें. हाँ, कभी कभी उसके फ़ोन बहुत वेटिंग आते थे, तो वो मेरे को बोलता था कि पापा उसके फ़ोन बहुत वेटिंग आते.
0: वेटिंग आती थी मतलब?
1: जब केतन सिया को कॉल करता था तो उसका फोन बिजी आता था, हमेशा वेटिंग पे रहता था।
2: तो उसको शक हुआ कि कोई और है सिया की लाइफ में, ऐसा कुछ कहा केतन ने आपसे?
1: हाँ, ऐसा नहीं कहा, नहीं, सिर्फ वो बोलता था बहुत वेटिंग आता है तो किससे बात करती है इतना। उसने उसको पूछा भी था तो बोले दोस्त है, दोस्तों के फोन आते हैं ना तो उनसे भी बात करना पड़ता है।
2: आपके मुताबिक सिया ऐसे क्यों
1: किया? आजकल तो सब बच्चों के दोस्त होते ही है ना, वो
2: नहीं,
1: तो
2: नहीं, बिल्कुल
1: से बात करते।
2: बिल्कुल विशाल जी, मेरा सवाल ये है कि आपके मुताबिक, आप केतन के पिताजी,
1: सर मुझे,
2: मैं आपको ये सीधा सवाल मैं कर रहा हूँ कि आपके दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, आपके हिसाब से ऐसे क्यों किया होगा सिया ने?
1: सर ये तो शॉकिंग है, समझ में ही नहीं आ रही ना बात। देखो बात इतनी छोटी सी थी, अगर उसका कहीं पे अफेयर है किसी के साथ, वो किसी को भी बता सकती थी, चलो बताना भी नहीं था, तो उस लड़के के मोबाइल से एक व्हाट्सएप उन दोनों की फ़ोटो किसी को भी कर देती थी तो हमारे साइड से एक मिनट में रिश्ता कैंसिल हो जाता था। कोई ऐसी ज़बरदस्ती थोड़ी थी कि उसको शादी करनी है।
2: आप उस परिवार को जानते हो विशाल जी, क्या क्या सिया पर कुछ प्रेशर था, ऐसा कुछ था कि उसको एक नो वे आउट टाइप का कंडीशन समझा?
1: अब तो ऐसे ही लग रहा है ना सर कि उस सिया पे उसके मम्मी डैडी और उसके बुआ का प्रेशर होगा, क्योंकि उनके घर में उसके बुआ का रेनो नरेंद्र मित्तल इनका बहुत चलता है और उसके हिसाब से सब कुछ चलता है, और ये रिश्ता भी उन्होंने ही कराया था रेनो नरेंद्र मित्तल।
2: क्योंकि ऐसा लगता है कि सिया शादी से इनकार कर सकती थी विशाल जी, एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लगता है कि कोई भी नो बोल सकता है, जैसे आपने बताया एक फ़ोटो सामने ला सकता है कि उनका अफेयर है, उनका बॉयफ्रेंड है, और कुछ थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो सकता है फैमिली के साथ और उसके बाद लाइफ कैरीज ऑन, ऐसे क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या था उस परिवार में कि वो ऐसे स्थिति में आ गए?
1: सर पता नहीं, क्या तो उनका कुछ प्लानिंग होगा जो अभी तक हमें पता नहीं चला, शायद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकाल पाए, अभी तक तो हमें पता चला नहीं कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया।
2: आप कब तक उस परिवार के संपर्क में थे इस हादसे के बाद? क्या आपने उनसे बात की, प्रयास किया बात करने के लिए उस परिवार से?
1: जी नहीं, हादसे के बाद सेकेंड डे फूल उठाने के कार्यक्रम पे वो लोग आए थे दोपहर में हमारे घर पे, बस उतने ही, तभी तक हम उनके संपर्क में थे, उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ।
2: आपकी बेटी विशाल जी संजना, जो जिसको पहले से शक थी कि कुछ कुछ गड़बड़ है इसमें, वो अब क्या कहती हैं आपसे, क्या कहती हैं अब?
1: पहले से मतलब हादसा हुआ उस दिन से शक था, उससे पहले नहीं था। हादसा हुआ उस दिन से क्योंकि केतन की वैसी आदतें नहीं थे ना कि कहीं वो क्लिफ पे जाके रुक जाए, एज पे जाके रुक जाए, ये उसकी आदतों में नहीं था।
2: जब उन किसी का पासपोर्ट गुम हो गया था, वो बाली जाने वाले थे एक प्री वेडिंग शूट के लिए, तब भी कोई शक नहीं हुआ सर कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें?
1: सर गड़बड़ का तो शक हुआ लेकिन इस बात का नहीं हुआ ना, क्योंकि केतन का ही पासपोर्ट सिया ने निकाल के फाड़ के फेंक दिया, वो पता अब चल रहा है, तब तो ऐसा हो गया था ना कि लॉस्ट हो गया, तो लॉस्ट को शक क्या करेंगे, लॉस्ट को तो ढूंढा बहुत सब जगह, घूम फूर के पुलिस में कंप्लेंट भी की, लेकिन उसमें ऐसा शक आने जैसा, इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ऐसा शक नहीं, कैसे आएगा ना सर।
2: इस इंसिडेंट के पहले आपका लास्ट बातचीत केतन से कब हुआ, और क्या था सर? बिल्कुल नॉर्मल था, उसके मन में कुछ था, क्योंकि उसके बिल्कुल कुछ दिन पहले वो गए थे इसी जगह पर जहाँ से वे ऑलमोस्ट गिरे थे। 17
1: को शाम को 11 बजे तक वो मेरे साथ था। बात करते हुए तो नॉर्मल था, ऐसा कोई उसमें डिस्कशन का या ऐसा।
2: विशाल जी, सिया और चेतन अब अरेस्ट हो चुके हैं, उनको क्या सजा होनी चाहिए आपकी तरफ से?
1: सर, मेरा तो अभी भी मेरा न्याय पे, अपने भारत के न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, और मैंने अभी भी उनसे रिक्वेस्ट की है और मैं बाकियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके पूरे पहले जड़ में जाए, धागे दोरे निकाले कि इसमें और किसी का हाथ है क्या, क्या है क्या नहीं। अगर कोई इसमें और इन्वॉल्व है तो उसको भी उसके अंदर गुनहगार बना के, और इनको जल्द से जल्द, मैं चाहूँगा कि इनको फांसी की सज़ा हो, क्योंकि आज मेरा 26 साल का बेटा, उन्होंने इतने छोटी सी बात के लिए उसकी हत्या कर दी। अगर शादी नहीं करनी थी तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सर, एक सेकेंड में कैंसिल हो सकती है, इसमें कोई ऐसा ज़बरदस्ती वाली बात नहीं थी, लेकिन इनकी थिंकिंग इतनी ये थी कि उन्होंने सीधा मेरा बच्चा मार दिया।
2: विशाल जी, क्या आपको लगता है कि सिया के परिवार को सिया की जो रिलेशनशिप थी चेतन के साथ, उसके बारे में पता था?
1: होगा ना सर, कैसे कैसे नहीं होगा, आप मुझे बताइए। आज हर एक के घर में बच्चे होते हैं, अपने बच्चे क्या कर रहे हैं किस माँ बाप को नहीं पता होता। ठीक है, 100% नहीं होता है तो 30-40-50% तो पता होता है ना, किससे बात कर रहे, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे।
2: आखिरी सवाल विशाल जी, अभी तक जो प्रोब हुआ है और हो रही है, उससे आप क्या संतुष्ट हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, या कुछ और होना चाहिए?
1: सर, जब तक उनको सज़ा नहीं होती जब तक तो मैं सेटिस्फाइड या संतोष हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा सुख चैन तो छीन लिया मेरे बच्चे को मार के। एक ही लड़का था मेरे को, आज मेरा बुढ़ापे का सहारा उन्होंने छीन लिया, तो मैं उस बात से संतुष्ट तो हो नहीं सकता। लेकिन जो भी आज सरकार या न्याय व्यवस्था काम कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है।
2: विशाल अग्रवाल, NDTV से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।
0: The most unsettling aspect of this entire story is that if everything we are seeing is correct, and remember Siya Goyal has confessed in front of the police, then it basically means that she saw murder of her fiancé as the least undesirable option to get out of this entire situation. That is the most alarming part. Joining me live to at least try and make some sense of what we're looking at, Meghna Pant is an author and journalist, R.T.C. Rajaratnam is a psychologist and author, Satya Mole is an advocate with the Supreme Court and has handled similar cases in the past. I'd request all of you to keep your answers brief because we've got limited time, so I can take multiple questions. Meghna, to you first, the central question, you know, if you didn't want to marry a person, why not just say no? So what if there would be a little bit of family drama? What are you making of this?
3: It's absolutely horrific, and there's no way to condone what Sia has done and what her lover have done in collusion. And we also, Shiv, I think, need to stop pretending that the parents are innocent bystanders in arranged marriages. They're often the CEOs of the entire operation. They're the ones who are shortlisting candidates, negotiating terms. So I think what we need to really do is that stop putting your children in such a dilemma that they don't have the freedom to choose. The fact that this girl thought that she can't say no to a marriage proposal and instead chose murder is really very reflective of the fact that there was always clearly a communication gap between the parents and her. And I read somewhere that she was afraid of disappointing her parents, but you're not afraid to commit murder, which is going to come up in the public sphere. I mean, that doesn't even make any sense, to be honest.
0: Anita, what was Sia's other options that she found murder to be, you know, the sort of path of least resistance to get out of whatever situation she was in. Like Meghna is saying, she didn't want to be on the wrong side of her parents, but she chose murder.